FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है शुक्रवार, शक संवत 1948, श्रावण माह, 30वीं तिथि। तदनुसार 21 अगस्त सन 2026, 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को ही अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश

0: नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जाँच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती वंदन वार।

चिंतन। भगवान महावीर का कथन है, कमजोर वर्ग की सेवा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है, यही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं झरोखा में। अब जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से जो कार्यक्रम दिन भर आपके लिए प्रसारित किए जाएंगे उनका लेखा जोखा झरोखा में सुबह 8 बजे समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम, अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 10:05 पर सुनिए लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आज जो विषय हमने चुना है वो है आसपास रखें साफ सफाई, मच्छर भागे बिना दवाई। इस विषय पर आपके विचार जानने के हम इच्छुक रहेंगे 10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में। स्पॉन्सर प्रोग्राम हमारी बेड़ियां दिन में 11 बजे आप सुनेंगे और 11:15 पर हमारा लाइव फरमाइशी कार्यक्रम होगा म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। इस कार्यक्रम में हम 10 बजे आपसे कहेंगे अपनी अपनी फरमाइश भेजने के लिए। आप हमें फरमाइश भेजेंगे और हम सिलसिलेवार आपकी फरमाइश इस प्रोग्राम में पूरी करेंगे। म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस प्रोग्राम में 11:15 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:05 पर। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे 5:20 पर। 5:30 स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। 6:30 पर अमृतवाणी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शब्द। 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने।

0: रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे, उसके बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दोपहर 2:15 पर, शाम 5:00, शाम 6:00, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11:00। और हम अपने श्रोताओं को बता दें, अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती का कार्यक्रम रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता। 7:00 भोले बिसरे गीत कार्यक्रम में पुराने फिल्मी गाने और 7:30 आप सुनेंगे प्रोग्राम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में फिल्मों से लिए गए युगल गाने आप सुनते हैं। 8:15 पर आप प्रोग्राम सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष। यही प्रोग्राम एक बार फिर से आप सुन पाएंगे 2:00। और 8:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम चित्रलोक। झरोखा में ये थी जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: सुने श्री रामचरितमानस गान आज भाग 287।

श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए हनुमान अपने को मात्र उनका एक दूत बताते हैं। वे रावण को चेतावनी देते हैं कि राम से द्रोह करने वाले की रक्षा हजारों शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं कर सकते, किंतु पवन पुत्र के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति युक्त वचन सुनकर भी कुपित रावण उस वानर का वध करने की आज्ञा देता है। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, दूत का वध करना नीति संगत नहीं है। रावण हनुमान का उपहास करते हुए उनका अंग भंग करके छोड़ देने का आदेश देता है। चूंकि वानर को अपनी पूंछ से अत्यधिक मोह होता है, इसलिए हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी जाती है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं श्री कालीनाथ मिश्रा जी। आज कुछ विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मिश्रा जी। अभी तक तो हम केवल क्लासिकल यानी शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे थे। भारत में लोक गीत और धुन की भी भरमार है। कुछ ताल ताल प्रवाह है, कुछ ताल जो लोकगीत में ज्यादातर प्रयोग होते हैं उसमें है दादरा कहरवा और चाचर दीपचंदी। तो मिश्रा जी, आज आप कौन सा ताल लेके आगे बढ़ेंगे?
1: आज ताल प्रवाह को हम एक उमंग देते हैं, दादरा ताल।
0: क्या बात,
1: दादरा में वो भी एक अंदाज है, लोगों को बड़ा खुश रखता है वो ताल। उसमें सोलो बहुत कम बजाते हैं, लेकिन लग्गियाँ बजती हैं, लग्गी लड़ी होती है
0: वाह,
1: हमारे। आप उठा के जब जाएंगे कई साल पीछे, तो आपको बहुत से गाने आपको दादरा मिलेगा। और पहले तो देखिए, बनाने वाले ने कैसा बनाया कि दादरा तीन शब्द में आते हैं।
0: आप फिल्म म्यूजिक की बात कर
1: जी
0: रहे
1: हाँ
0: हैं,
1: जी हाँ जी हाँ,
0: क्या कहने हैं?
1: दादरा तीन शब्द का बनता है, और उसका नाम भी है दादरा, और चलन है उसका 6 मात्रे का।
0: तीन दुनी छह,
1: जय तो उसमें हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे चौरसिया जी, फारूक भाई, ऐसे बहुत से कलाकार पहाड़ी धुन या धुन बजाते हैं, तो दादरा में उसका एक अंदाज। और दादरा से लग्गी बजाते समय हम कहरवा में कैसे जाते हैं, उसका भी अंदाज हम आपको एक झलक दिखाएंगे। तो सुनने वाले श्रोताओं को मैं कालीनाथ मिश्रा आज फिर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ताल प्रवाह के इस कड़ी में हम आते हैं दादरा को लेके, और
0: वाह,
1: बहुत से इसमें गाने जो उपयोग किए हैं दादा, मैं आपको थोड़ा गुनगुना के बताऊंगा।
0: जरूर।
1: तो प्रस्तुत है दादरा, फारूक भाई।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के रसिक श्रोताओं, मैं रामकृष्ण दास इस कार्यक्रम

ये देखिए जो अभी सुर लगा रहे, एक बात बताऊं कि हमें ताल में हमें सुर का ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं, ताल को विशेष मानते हैं, लेकिन अब जो वो बजा रहे हैं उसमें एक ऐसा अंदाज दे रहे हैं कि एक अलग ही पैटर्न है उसका, एक अलग अंदाज है दादरा का कि कहीं भी आप जा सकते हैं। क्या बात है, अब ये बनारस का स्टाइल उठाने का, बनारस का उठ...

0: कभी कभी होता है घिस्सी, किसको कहते हैं बाई में घिस्सी,
1: वो ढोलक की चीज होती है,
0: ढोलक की चीज है, लेकिन बाया हमारा बड़ा अच्छा होता है, इसमें

0: सुर अलग लग रहा है। उजाला है राग पहाड़ी में है, वो दादरा ताल में है। लता दीदी ने गाया है शंकर जयकिशन। ओ मोरा नादान बाल मा न जाने दिल की बात, थोड़ा सुर अलग है लेकिन प्योर दादरा है। अब इसमें लग्गी कैसे बजेगा फारूक भाई?
1: सिर्फ लग्गी के सिलसिले में एक बात मैं जानना चाहूंगा, दादरा जब गाया जाता है तो उसमें दादरा में भी लग्गी बजती है और कहरबे में भी बजती है, तो दोनों का बताइए।
0: दोनों का अंदाज बताता हूँ
1: जी।

0: अच्छा, लग्गी के साथ लड़ी भी बजती है, वो क्या चीज है?
1: वो उसी का एक अंदाज है कि जो हम लग्गी में जब जाते हैं धातिन नाकर तक थे ना, तो उसके पलटे जो होते हैं उसकी एक लड़ी होती है।
0: अच्छा,
1: कम से कम 4-5 लड़ी जब बजाएंगे तब वो जाके लड़ी कहलाएगी, लग्गी और लड़ी।
0: थोड़ा

0: ये एक अंदाज है। तो दास बाबू, दादरा एक ऐसा चलन है, एक ऐसा ताल है कि बहुत सी गाना इसमें, बहुत गाने पॉपुलर हैं, अगर उसको हम देखने जाएंगे तो ताल प्रवाह में हमको कम से कम 2-3 महीना लग जाएगा। एक बड़ा सुंदर गाना है मोरा नादान बालमा न जाने दिल की बात जी, गाया हुआ है लता दीदी का, फिल्म है उजाला, राग पहाड़ी पे है।
1: अच्छा।
0: और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं शंकर जयकिशन साहब हैं।

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी पांचवी कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोले बिस्तरे की।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आइए सुने भूले बिसरे की। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम का आगाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिल्म के गाने से, हेमंत कुमार और सविता चौधरी की आवाजें। गीत प्रदीप का, संगीत सली चौधरी का।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिल्म का ये गाना था। हेमंत कुमार और सविता चौधरी की आवाजें थी। कवि प्रदीप के बोल और संगीत सलील चौधरी का था। ये समुद्री डाकू फिल्म का गाना बोल विश्वामित्र आदिल के, संगीत जयदेव का, आवाज तलत महमूद और आशा भोसले की।

से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम है जागते रहो। शैलेंद्र के बोल, संगीत सलील चौधरी का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। राजेंद्र कृष्ण के बोल सजाद हुसैन की तर्ज।

संग दिल फिल्म का यह गीत आपने सुना है। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, सजाद हुसैन की तर्ज थी, तलत महमूद की आवाज। अब कार्यक्रम का आखिरी गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज, फिल्म का नाम बादल।

0: साथ अब आज का बुली बिसरे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। वीको टर्मरिक।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करुवा

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में दुनिया फिल्म का गीत आपने सुना। संगीत शंकर जयकिशन का था। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में हमजोली फिल्म का गाना, आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत

0: भारती से बोल रही हैं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए, बस अब से कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने

0: का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाय के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, NEET या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार

0: अस्थाई उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: एनटी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटी ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटी ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटी ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा कृष्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसल

0: आधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोक सत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 42वीं कड़ी।

1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर वंदे मातरम का गायन किया।

0: सन 1900 से आगे हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से ही करने की परंपरा बन गई। उस वर्ष दक्षिणारंजन सेन ने वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। आगे थोड़े ही समय में शास्त्रीय संगीत जगत के पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उनके शिष्य ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक बुआ पटवर्धन और पंडित रामकृष्ण बुआ वजे जैसे गायक अपने गायन के माध्यम से राष्ट्र सेवा की भावना से अधिवेशन में अपनी वंदे मातरम की गायन सेवा देने लगे। इसी काल में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई। धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियां बदलती गईं। कांग्रेस के हिंदू नेता धर्म निरपेक्षता का आग्रह कर रहे थे तो कुछ मुस्लिम नेता धर्म प्रेम को प्राथमिकता दे रहे थे। इसका परिणाम कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रसंग के रूप में सामने आया।
1: उन्नीस में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ था। अली बंधुओं में से मौलाना मोहम्मद अली इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहले ही दिन मंच पर कांग्रेस के सभी नेता अध्यक्ष सहित उपस्थित थे। अधिवेशन शुरू होने की घोषणा हुई। दर्शकों में से एक ऋषि तुल्य व्यक्ति मंच पर आ रहे थे। दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ रहा था। वो व्यक्ति थे भारतीय शास्त्रीय संगीत के भीष्माचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। मंच पर बैठे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सीने तक लटकती हुई दाढ़ी, सिर पर ऋषियों की तरह बंधे हुए केश, ऐसे शुभ्र वस्त्रधारी पंडित जी प्रसन्न चित्त से वंदे मातरम गाना शुरू करने ही वाले थे। तभी अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें रोकते हुए कहा, वंदे मातरम मत गाइए, मेरे धर्म में संगीत निषिद्ध माना गया है।
0: अचानक घटी इस घटना से मंच पर मौजूद कांग्रेस के प्रमुख नेता हक्के बक्के रह गए। अध्यक्ष का ऐसा कहना पंडित जी जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक का अपमान तो था ही, साथ ही खुदीराम बोस से लेकर अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से सिद्ध किए हुए तथा बंगाल के विभाजन को रद्द करवाने वाले इस राष्ट्र मंत्र का भी अपमान था। सामने खड़ा जनसमुदाय स्तब्ध था। पंडित जी ने अपने ऋषि तुल्य स्वभाव के अनुसार जरा भी विचलित हुए बिना शांत फिर भी स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया,
2: माननीय अध्यक्ष महाराज, ये कांग्रेस का मंच है, किसी भी धार्मिक समुदाय का मंच नहीं है। मैं हमेशा की परंपरा के अनुसार वंदे मातरम गाऊंगा ही।
0: अध्यक्ष सभा स्थल छोड़कर चले गए। पंडित जी ने शांतिपूर्वक वंदे मातरम का गायन शुरू किया। गायन समाप्त होते ही पूरे जन समुदाय के वंदे मातरम के नारों से परिसर गूंज उठा। उसके अगले अधिवेशन में पंडित जी वंदे मातरम गाने के लिए नहीं आए। वंदे मातरम का मुस्लिम समाज द्वारा पहला सार्वजनिक विरोध इसी प्रसंग में हुआ था।
1: एक अत्यंत महान कलाकार द्वारा अपनी अस्मिता को बनाए रखते हुए अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी राष्ट्रभक्ति के दर्शन कराना, ये बिल्कुल नई बात थी। जिस काल में कलाकार राजनीति के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे या बाहरी दुनिया से अधिक अपनी कला की दुनिया में ही रमते थे, उस काल में पंडित

पलुस्कर ने जो धैर्य दिखाया वो अतुलनीय कहा जाना चाहिए। 1902 में भारत में संगीत की पहली ध्वनि मुद्रिका यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्रकाशित हुई। ध्वनिमुद्रण के इस पहले दौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की तरह ही भारत के अनेक श्रेष्ठ गायकों ने रिकॉर्ड के लिए गायन नहीं किया था। इसके कई कारण थे, परंतु उन कारणों से उनके समय में रिकॉर्डिंग तकनीक का आविष्कार हो जाने पर भी उन्होंने रिकॉर्ड के लिए गायन न करने के कारण आज के शोधार्थियों के लिए, अभ्यार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए उनके गायन के बारे में लिखे गए संगीत संबंधी लेखों से, स्मृतियों से ही उनकी गायकी का उन्हें दर्शन मिलता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा किया गया वंदे मातरम का राग काफी में नोटेशन आगे उनके संगीत अध्यापन की विरासत को समर्थ रूप से आगे बढ़ाने वाले उनके शिष्य पंडित विनायक बुआ पटवर्धन ने प्रकाशित किया। पंडित विनायक बुआ की आवाज में यह दुर्लभ ध्वनि मुद्रण घोष महर्षि बापूराव दाते ने स्वयं किया था।

हाल के समय में यही संगीत रचना विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे द्वारा एक संगीत समारोह में प्रस्तुत की गई। उस समारोह का तथा आज की पीढ़ी के गायक पंडित शौनक अभिषेकी और साथियों के स्वर में ध्वनि मुद्रण प्रकाशित हुआ है। पहले सुनते हैं विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के स्वर में वंदे मातरम की झलक।

0: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जब वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था, उन्हीं दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को एक नई दिशा मिल रही थी।
1: जुलाई 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें आईं। उनमें से मद्रास विधानसभा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से ही हुई थी। मद्रास विधानसभा के अध्यक्ष सांबुमूर्ति ने दैनिक सभा कार्य की शुरुआत वंदे मातरम से ही हो ऐसा निर्णय अंग्रेजों के विरोध को दरकिनार करके लिया था।
0: इन सभी मंत्रिमंडलों की मुख्य बागडोर अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी हुई थी, फिर भी थोड़े बहुत अधिकार

0: कांग्रेस को भी थे ही। मुस्लिम लीग के कुछ उम्मीदवार चुनकर आए, परंतु उन्हें बहुत कम सीटें मिली। इसलिए बैरिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस पर आलोचना शुरू कर दी और उसमें वंदे मातरम को भी मुख्य निशाना बनाया।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 42वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया। रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है, जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
5: सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सोनू निगम, आफताब साबरी और हाशिम साबरी की आवाजें, जावेद अख्तर, अन्नू मलिक। फिल्म का नाम है मैं हूं ना।

विविध भारती से चित्रलोक और अब सोनू निगम की आवाज। फिल्म का नाम है कल हो ना हो।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना? बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
4: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज़, 22 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा सारा साथ हो।
0: विविध भारती से चित्र लो।

प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे।

0: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
1: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
0: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
1: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य। आज ही अपनाएं BSNL।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
5: हाँ जी वादा।
0: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: फिल्म का नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर, पीयूष मिश्रा की आवाज थी।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे

0: शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कोचीपोलो में आप सुनेंगे प्रोग्राम आज का अखबार।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: नौ बजकर 30 मिनट हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
5: आज का अखबार।
2: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम लेकर आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स भी प्ले करते हैं। तो सिलसिला शुरू हो चुका है और आज सबसे पहले जिस खबर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो खबर तस्वीर के साथ आज के अखबार में छाई हुई है, पहले पेज पर छाई है और ये तस्वीर है बदलते हुए कश्मीर की। और ये लिखा है खबर के साथ, जन सैलाब उमड़ा है एक स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में जहां मैच चल रहा है। और अखबार लिखते हैं कि ये कश्मीर है और रात के 2 बजे हैं। कभी आतंकवाद प्रभावित रहे पुलवामा में, क्रिकेट का रोमांच चरम पर है। 40,000 दर्शकों की तालियों की गूंज बता रही है कि माहौल बदल चुका है। तो इस खबर के साथ तस्वीर है, खचाखच ये स्टेडियम जो है वो भरा हुआ है। और लिखा है कि रात के 2 बजे हैं, क्रिकेट के मैदान पर चौकों छक्कों की

बरसात हो रही है। करीब करीब 40,000 युवा दर्शकों का जोश तालियों के साथ नजर आ रहा है। तस्वीर कश्मीर के पुलवामा की है। कभी आतंक, पथराव और बंद के लिए सुर्खियों में रहने वाले पुलवामा में तालियों की ये गूंज घाटी के बदलते माहौल और युवाओं की बदलती पसंद की कहानी कह रही है। रॉयल प्रीमियर लीग में बुधवार की रात कश्मीर ने उस पीढ़ी की तस्वीर पेश की है जो भविष्य को बंदूक से नहीं, बल्ले, किताब, हुनर और रोजगार से जोड़ना चाहती है। मैदान में खूब नारे लगे, अखबार लिखती है कि मैदान में खूब नारे लगे पर विरोध के नहीं, अपनी पसंदीदा टीम के समर्थन में। और ऐसी ही एक और खबर है कश्मीर से ही जुड़ी हुई। कश्मीर की 15 बेटियों ने बदली वेटलैंड की तस्वीर। जम्मू कश्मीर की 15 महिलाओं की टीम ने वेटलैंड बचाने की मुहिम से बड़ी कामयाबी हासिल की है। यही कारण है कि इलाके के पंपोर के चटलम वेटलैंड में इस साल 1,00,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। पहले ये पक्षियों की जो संख्या थी 50,000 के लगभग थी, लेकिन महिलाओं ने अपने बर्ड वॉचर्स नेटवर्क की शुरुआत जैसे कि जनवरी 2025 से की। इसे वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड से सहयोग मिलना शुरू हुआ। महिलाओं की टीम हर रविवार वेटलैंड की खुद सफाई करती है, पक्षियों की निगरानी करती है और स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाती है। यह महिलाएं गांवों में लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों को पक्षियों, जंगलों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जागरूक करती हैं। टीम का लक्ष्य क्या है? टीम का लक्ष्य है कि अब उत्तरी कश्मीर के वेटलैंड को बेहतर बनाने पर जोर देना है। तो ये है बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर।

Hey Chandigarh, this is Sahaj Sabharwal, an author, influencer, motivational speaker, youth icon from Jammu and Kashmir and an aeronautical engineer. So, I ask you, do you have any place in your CV, or a story, or tradition, or talent that India should know about? Then this is a chance for you all, Gems of India Challenge, you make your video from 1 to 3 minutes. और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने बताइए। बस आपको क्या करना है कि माई वेव्स पर आपको लॉगिन करना है और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक आपने अपलोड करनी है। डोंट जस्ट विजिट योर सिटी।

0: Travel too, so you create, then post, then you have to spread it in the whole India. Thank you.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से FM 107.2 MHz पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब बारी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सचिवों के साथ तीसरी बैठक, उन्होंने नीट पेपर लीक से हटकर सोचने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री का कहना कि विभागों में यदि तालमेल होता तो नीट जैसी घटना ना होती। उनका कहना है कि रक्षा के स्टार्टअप बढ़ाए जाएं और दूसरे देशों पर निर्भरता घटाएं।

वंदे मातरम पर गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि पूरा गीत ना गाना कानून का खुला उल्लंघन और देश विरोधी। राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य सितंबर में होगा पूरा। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए पाकिस्तान के नूर खान बेस पर उतारे ड्रोन और हथियार, भारत सतर्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी। 1984 के सिख दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की मौत हो गई है। बीते कुछ साल में दो मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी और अब 20 अगस्त को 42 साल लंबी कानूनी लड़ाई का हुआ था अंत। सोना 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा और चांदी हुई 10,000 रुपए महंगी। घरेलू शेयर बाजार में हुई जोरदार वापसी, सेंसेक्स 628 अंकों से उछला और पूंजी 2.71 लाख करोड़ बढ़ी। झारखंड एसएससी और सिविल सेवा नियुक्तियों पर रोक का आदेश हुआ रद्द। विशाखापत्तनम में जनगणना में धार्मिक डेटा संग्रह के तरीके पर संघ सहमत। समन्वय समिति की बैठक में जनसांख्यिकी बदलाव पर हुआ गहन मंथन। आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और कारोबार जगत से जुड़ी मिलीजुली हेडलाइंस। भारत जापान में समुद्री सुरक्षा पर अहम करार, बढ़ेगा सहयोग। केंद्र सरकार ने दिल्ली विकास की राह तय करी, 40 लाख नए मकान बनेंगे, 200 वर्ग किलोमीटर का शहर होगा विकसित। ये है मास्टर प्लान। चीन में होगा कल से रॉबर्ट ओलंपिक्स। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर बने अवैध ढांचे पर चलाया बुलडोजर। केंद्र सरकार ने त्योहारों के मौसम से पहले चीनी की सीमा तय करी, 15 दिन का स्टॉक ही रख पाएंगे थोक उपभोक्ता। और 16.2 करोड़ में बिकी महात्मा गांधी की पांडुलिपि ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब एक म्यूजिकल नंबर प्ले करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं इसी प्रोग्राम में।

0: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं, और रेडियो सेट पर हमारा चैनल है 107.2। 9:46 हो चुके हैं, सिलसिला प्रोग्राम का जारी है, और अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। आज की अखबारों में पहली खबर है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कल पंजाब यूनिवर्सिटी में MA का पेपर दिया। बोले, कांग्रेस की बैठकें तो हर माह होंगी, परीक्षा छूटी तो साल खराब होता। पंजाब में आज बारिश संभव है, फिर 4 दिन बढ़ेगा तापमान। आज पंजाब बंद, प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने किया नियमों में बदलाव। बिजली बिल के सरचार्ज में मिलेगी राहत। मोहाली को उत्तर भारत का अगला GCC और टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करेगी पंजाब सरकार। वित्त और परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकेंगे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, और पंजाब के हर सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से बनेंगे शौचालय। पंजाब के बाद अब चलते हैं

हरियाणा की ओर पीएम गति शक्ति से जुड़ी खबर है। मास्टर प्लान के इस्तेमाल से प्रक्रिया में बदलाव होगा, साइट की जांच अब एक या दो दिन में पूरी होगी। यानी प्रोजेक्ट के साइट की जांच। लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि आदि बद्री और लोहगढ़ में बनेंगे पर्यटन हब। 24.16 करोड़ मंजूर। गेहूं की तैयारी, गेहूं का बीज पर्याप्त, यूरिया डीएपी का भी स्टॉक पूरा। हरियाणा में 22 और 23 फिर 29 और 30 अगस्त को बूथों पर मिलेंगे बीएलओ। विशेष गहन पुनरीक्षण के में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का एक और मौका। ऐसा यार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल के गांव जडौला में संत गुरु रविदास की प्रतिमा स्थापन के मौके पर कहा कि सेवा और सामाजिक समरसता ही गुरु रविदास को सच्ची श्रद्धांजलि। और हरियाणा पुलिस ने 7 महीने में 16,308 फर्जी लिंक वेबसाइट और कंटेंट हटवाए। पंजाब हरियाणा के बाद अब चलते हैं हिमाचल की ओर। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, विपक्ष वॉकआउट की बजाय सदन में दे जवाब, सरकार चर्चा को तैयार। मंडी में फीस वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन। और कल सोलन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सोलन कांग्रेस ने उनके योगदान को याद किया। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम लेकर आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। हेडलाइंस के बाद अब बारी गाने की।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: वेलकम बैक दोस्तों, अब बारी है लोकल हेडलाइंस की। वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। पंजाब बंद से आज चंडीगढ़ के स्कूलों पर भी असर है, कई निजी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के छात्र संघ चुनाव का स्केड्यूल जारी है, 24 को नामांकन है, 31 को मतदान होना है। इस बार काउंसिल के पदाधिकारियों के साथ विभागीय प्रतिनिधियों और एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए भी कराए जाएंगे चुनाव। मोहाली में निर्माणाधीन अस्पताल की बेसमेंट की मिट्टी धंसी, 2 की मौत। चंडीगढ़ में नगर निगम की बैठक में मेयर सौरभ जोशी ने निगम सदन में अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल और कहा कि फायर ब्रिगेड ने सूचना मिलते ही संभाला मोर्चा। मेयर ने कहा कि जल भराव वाले इलाकों में खुद पहुंचा, अफसरों को फोन किया तो कहा कि जाम में फंसे हैं। चंडीगढ़ में बारिश ने धोई शहर की हवा, 1 QI 46 पर पहुंचा। 31 अगस्त तक नहीं दौड़ेगी कालका शिमला रूट की 2 टॉय ट्रेन्स। चंडीगढ़ में आज और कल पांचों जोन में रेहड़ी फड़ी वालों पर कार्रवाई। प्रशासक श्री गुलाबचंद कटारिया ने नगर निगम, इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग विभाग को दिए निर्देश, सड़क के साथ नीचे बिछी पाइप की पाइपलाइन की भी जांच होगी। और आपको ये बता दें कि आज जरूरी मरम्मत कार्य के चलते सेक्टर 37 के कुछ भागों में सुबह 8 से 11 बजे तक सेक्टर 20, 30, 41 गांव बड़ेहड़ी, बटरेला, इंदिरा कॉलोनी, सुभाष नगर, मक्खन माजरा, मौली जागरा, सुंदरनगर के हिस्से में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे और सेक्टर 37 के हिस्सों में दोपहर 3 से शाम 4:30 बजे तक बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी और एंटरटेनमेंट की जो आपूर्ति है हमारे यहाँ से वो साथ साथ जारी रहेगी।

0: और दोस्तों चलते चलते मौसम की जानकारी भी आपको दे दें। शहर के आसमान में बादल छाए हुए हैं और गरज के साथ बौछार की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग ने। तो शहर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, तो अपना अपना छाता लेकर अपना अपना प्रबंध करके अपनी मंजिल की ओर रवाना होइए। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखते हुए अपने आसपास का भी पूरा ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: अभी आपने आज का अखबार कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार, हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस अब से कुछ ही पलों में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों, शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया है। NTA ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके।

0: और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमरीका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कूरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ रही है। हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतूप जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। और खेलों में हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं दिल्ली में आज हल्की वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
3: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
4: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
3: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
4: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य। आज ही अपनाएं BSNL।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: 10:05 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक और ये समय है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ का।
2: हेलो
3: हेलो,
2: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
3: हेलो चंडीगढ़।

नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं, आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 11 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे। आपको मालूम ही है, किसी एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक है कि आसपास रखें साफ सफाई, मच्छर भागे बिना दवाई। तो इस टॉपिक से क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं और इस मामले में आप अपने घर या आसपास किस तरह से स्वच्छता बरकरार रखते हैं और मच्छर ना पनपें, ना हमें तंग कर पाएं, इसके लिए क्या कुछ आप करते हैं, तमाम बातों के बारे में आप इस प्रोग्राम में बातें करेंगे। और ये बातें केवल बातें नहीं होती, बल्कि ये बातें किसी ना किसी के लिए एक रास्ता बन जाती हैं, एक दिशा तय करती हैं। और जब हम आपस में मिलके विचार साझे करते हैं तो यकीनन कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकलता है और मन ये भी कहता है कि हाँ, वागे ऐसा भी हो सकता है। तो आज के इस प्रोग्राम

0: में इसी टॉपिक पर आपने हमसे चर्चा करनी है। आगे बढ़ते हैं इससे पहले इस प्रोग्राम में आज का ये टॉपिक रहेगा। सबसे पहले इस प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं ये सुन लेते हैं।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
2: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
3: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
3: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
1: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
0: तो हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के ये प्रायोजक हैं और अब बारी है उसी टॉपिक की जिसका नाम है कि आसपास रखें साफ सफाई, मच्छर भागे बिना दवाई। नंबर्स नोट कर लीजिए 2660615, 2660617 और 2660619। ये हमारे तीन नंबर्स हैं, इनमें से किसी एक नंबर को मिलाना है और इस बारे में आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बस वो हमसे शेयर कर लेना है। और देखिए हमारे श्रोता ऑनलाइन आ चुके हैं, अब देरी किस बात की है, आपसे बातों का सिलसिला होता है शुरू। हेलो चंडीगढ़, जी नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
4: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश सली बोल रहा हूँ।
0: नॉर्थ ईस्ट से
4: त्रिपुरा।
0: आपकी आवाज नहीं आ रही है, मतलब नाम नहीं पता
4: चल रहा है। हेलो
0: जी, फरमाइए फिर से।
4: हाँ अभी आ रहा है।
0: बिल्कुल
4: जी, तो मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ अविनाश।
0: अच्छा, त्रिपुरा से अविनाश।
4: जी,
0: वेलकम अविनाश जी इस प्रोग्राम में। आप जब भी फोन मिलाते हैं तो जी, मुझे लगता है कि आपकी पहली कॉल लगती है।
4: हो सकता है।
0: नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है।
4: नहीं ऐसा मेरे साथ 5 बार हुआ है, लेकिन ये और बाकी बार तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 5 बार
0: हो गया, तो आज छठी बार है।
4: नहीं आज पांचवी बार है। और
0: मेरा नहीं नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमें अच्छा लगता है
4: जी
0: कि हमारे जो आसपास श्रोता रहते हैं उनकी कभी कभी शिकायत रहती है कि फोन नहीं मिलता है। आप त्रिपुरा से करते हैं तो पहले नंबर पर आपका फोन मिल जाता है, कमाल हो गया भाई।
4: जी जी, क्योंकि जी देखिए दूरियां नजदीकियां बन चुकी है ना, तो इसलिए जो दूर के कॉलर हैं उनके लिए तो ये आसान हो चुका है।
0: हाँ, दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है।
4: जी जी जी।
0: अच्छा अविनाश भाई, त्रिपुरा में कौन सा कस्बा, आप कौन सा शहर?
4: जी मेरा शहर का नाम है धर्मनगर।
0: धर्मनगर।
4: जी जी।
0: अच्छा, और त्रिपुरा का मौसम कैसा है धर्मनगर का?
4: जी मौसम तो कल रात बहुत ही तेज तरह बारिश हुआ था, अभी तो धूप खिला हुआ है।
0: धूप खिला है, चलिए अच्छी बात है। तो अब करते हैं अविनाश जी आज के टॉपिक के बारे में बातचीत, क्या कहना चाहेंगे? टॉपिक सुना आपने कि बताऊं?
4: जी जी जी, टॉपिक सुना है
0: जी।
4: आसपास साफ सफाई रखें और बिना दवाई मच्छर दूर भगाएं।
0: क्या बात है, बताइए क्या कहना चाहेंगे
4: जी। तो इसके बारे में ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए हम लोग अगर आसपास साफ सफाई रखेंगे तो मच्छर तो क्या वो अलग अलग अलग जो विषय जो और भी जो हम सबको लिए नुकसानदायक होते हैं वो भी भाग जाएंगे, सांप सांप बिच्छू वगैरह। तो इन सब के लिए हमें साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी है, और खास करके प्लास्टिक के सामान हम जैसे खाते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं तो उसमें पानी जमा रहता है, तो ये बाद में वो मच्छरों के लिए पनपने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इन सभी के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: नहीं, जहाँ तक अविनाश भाई सांप की बात है, किसी और कीड़े मकौड़े की बात है, तो वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं
4: जी,
0: है ना। लेकिन मच्छर जी, तो डरते ही नहीं है।
4: नहीं नहीं, मच्छर तो गाने सुनाने के लिए आपके।
0: हाँ, आप बार बार तालियां बजाते हो, बार बार भागने लगता है, फिर आता है।
4: जी जी जी।
0: तो अच्छा, उसको बचने के उपाय भी बहुत आते हैं।
4: जी जी, बचने के उपाय तो है, जैसे हम अगर बात करें तो हम जैसे बहुत सारे बाजार में मिलते हैं, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे नुकसान हम सभी के लिए होता है।
0: नहीं, आप अपनी तरफ से निशाना लगाते

0: जी निशाना तो लगाते हैं लेकिन उसमें फायदा है, कभी होता है कभी नहीं होता है।
1: हाँ, एक जाता है 10 आते हैं,
0: जी जी जी
1: तो वो इलाज क्या हो सकता है?
0: उसका इलाज तो हम बस साफ सफाई ही कर रखें और खास करके मच्छरदानी का भी यूज करें अपने घर पे जब भी।
1: अच्छा चलो, हम ये पूछ लेते हैं कि अविनाश भाई अपने घर की सफाई मच्छरों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से करते हैं?
0: जी घर का देखिए आसपास का पूरी तरह से साफ सफाई रखते हैं, उसके बाद वो उसका फिनाइल से छिड़काव भी करते हैं आसपास की पूरी, मतलब कि और समाज में भी जागरूकता फैलाना जरूरी है, क्योंकि हम अपने घर में तो साफ सफाई रख सकते हैं लेकिन ऐसा तो अपने घर में करने से नहीं होगा, पूरे इलाका अगर साफ सफाई
1: नहीं
0: हो
1: नहीं
0: तो।
1: हम तो फिलहाल अविनाश भाई के घर की बात करते हैं। एक एक घर जब करेगा तो मोहल्ला तो
0: हाँ
1: अपने आप साफ हो जाएगा। तो किस
0: जी जी
1: तरह से
0: जी
1: आप अपने घर में ख्याल करते हैं?
0: जी अपने घर में तो हम बिल्कुल ख्याल रखते हैं और साफ सफाई बिल्कुल रखते हैं, जैसे कि कूड़ा वगैरह हो गया ये सब, ये वो मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा दूर मतलब कि डस्टबिन में फेंकना, वो प्लास्टिक के जो सामान हम खाते हैं उसको भी डस्टबिन में रखना है, और जैसे उसमें पानी जमा ना हो, और आसपास में जो ये जो जंगल वगैरह रखते हैं उन सभी को साफ सफाई करके रखते हैं, तो इनसे मच्छर आने का जो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं।
1: कम हो जाता है।
0: और कृत्रिम जैसे कि हम जो गाय के जो गोबर रहते हैं उसको हम जला करके धुआं करते हैं तो उससे जो मच्छर आने वाला है चांस है वो भी नहीं आता है घर में।
1: अच्छा, गाय के गोबर को जब आप जला के धुआं करते हैं तो उस धुएं से मच्छर भाग जाते हैं?
0: जी जी बिल्कुल भाग जाते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है, और हम सबके जो मतलब पर्यावरण के लिए भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो गाय के जो गोबर का जो धुआं होता है वो इससे किसी का नुकसान होने वाला है नहीं।
1: हाँ, वो पर्यावरण का दोस्त है।
0: जी जी
1: और ये देखा गया है कि गोबर का जो गाय का गोबर है वो अपने आप में बहुत उपयोगी है, कई मामलों में उपयोगी है।
0: जी जी
1: और आपने बताया कि जब उसका धुआं घर में किया जाता है तो उससे मच्छर भाग जाते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल भाग जाते हैं, लेकिन
1: जी
0: लेकिन देखिए मच्छर भी बहुत ढीठ होते हैं, अब जो आप अगर लगातार
1: जी
0: 10 दिन अगर उसे यूज करेंगे तो उनको उनके शरीर भी है वो, जैसे हम देखिए धूप में अगर लगातार चलें तो हमारा शरीर भी ऐसा बन जाता है कि हम धूप में चलने की आदत बन जाता है, तो इसी तरह से मच्छर भी ऐसे होते हैं कि उनको भी ये धुआं में रहते रहते उनको भी आदत बन जाता है, बाद में ये धुआं भी कारगर नहीं होता है।
1: हाँ, और देखिए मच्छर इतना वाकई जिद्दी है, ढीठ है, कि इतना सब कुछ करने पर भी वो गाना गाना नहीं छोड़ता।
0: नहीं, गाना गाना नहीं छोड़ते। जी
1: चलिए हम भी एक गाना प्ले करते हैं
0: बिल्कुल
1: अपनी
0: बहुत
1: बातचीत
0: अच्छा
1: के
0: लगा।
1: बाद,
0: जी हाँ
1: उसके बाद फिर मिलते हैं। और आपने त्रिपुरा से बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा।
0: जी बिल्कुल धन्यवाद।
1: वाकई आप जब भी मौका मिले तो मिलते रहिए, करते रहिए।
0: जी जी जी बिल्कुल
1: हाँ, शुक्रिया।

0: वेलकम बैक दोस्तों, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में। आज हम बात कर रहे हैं कि आसपास रखें साफ सफाई, मच्छर भागे बिना दवाई। और मच्छर हमारा चैन, हमारा सुख सब छीन लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रात की नींद भी हराम कर देते हैं। तो इन मच्छरों से निजात पाने का एक सरल और सटीक उपाय यही है कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी है और ज़रूरी जो छिड़काव हैं वो करते रहना है। तो हमारे मित्र जो हैं इस प्रोग्राम में, अविनाश त्रिपुरा से उन्होंने बातें बताई। अब बारी हमारे अगले श्रोता की है। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: जगह का नाम है कोटखाई और मेरा नाम है राकेश।
0: राकेश, क्या हाल चाल है राकेश जी?
1: जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। तो आज मुझे लाइन मिल गई है कि जल्दी जल्दी अगर मेरे को लाइन मिल जाती तो मुझे अब और भी सीट पे जाना है थोड़ी देर में। तो फिर
0: अच्छा आप मतलब जी, हर जगह विजिट करते हैं हर चैनल पे?
1: जी।
0: तो कहिए क्या कहेंगे
1: जी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर की देखो, जैसे कि मच्छरदानी का उपयोग तो करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि समय समय पे जो है, जैसे कि खाली जो है बर्तन पड़े हैं उसको खाली रखना चाहिए, और छत के ऊपर जो खाली बर्तन जैसे टायर होता है, ये अन्य जो चीजें होती है तो उसको खाली करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपने घर की बात करूँ तो हमने अपने घर में जाली वाला दरवाजा लगा रखा है, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मच्छरदानी का प्रयोग तो करते हैं, और छिड़काव समय समय पे करें, और पूरे बाजू के कपड़े जरूर पहने, क्योंकि मच्छर खाते हैं तो क्या बोलते हैं, दर्द भी होता है और वो खून को चूस देते, तो पूरे बाजू के कपड़े जरूर पहने, और बच्चों का ख्याल तो बिल्कुल विशेष तरह के ख्याल रखना चाहिए मच्छर से बचाव का।
0: और क्या, और ये जो मच्छर है भाई, ये छोटा सा मच्छर है, भिन भिन आता हुआ, गुनगुनाता हुआ आसपास मंडराता है, और मौका जी मिलते ही डंक मारता है।
1: जी जी जी।
0: और हमें अच्छे भला आदमी जो है बिस्तर पर पड़ जाता है।
1: जी जी जी। ये जो मच्छर होते हैं, कई बार जब हम सोते हैं बिस्तर में, कई बार हम अगर कमल ओढ़ देते हैं मुंह पर तो फिर गर्मी लगती है, अगर हम कमल खुला छोड़ देते तो फिर मच्छर आ जाते हैं। लेकिन आदमी फिर सोचते कि क्या करें, हम अगर कमल को भी ओढ़ लेते तो फिर गर्मी लगती है, जब कमल को निकाल के फिर मच्छर खाते हैं।
0: राकेश जी, आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि जो हमारे बर्तन कोई खुले ऐसे पड़े रहते हैं,
1: जी जी जी,
0: कोई छत पे होता है, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं घर के कोने में, कभी उस तरफ नजर नहीं गई,
1: जी जी,
0: तो बारिश का जो पानी होता है उसमें रुक जाता है।
1: हाँ हाँ।

0: और जैसे ही बारिश बंद होती है, जो मौसम साफ होता है, तो मच्छरों को बहुत अच्छी जगह मिल जाती है पनपने के लिए। और जो डेंगू का मच्छर होता है, डेंगू का, वो तो वैसे भी इतना नखरा है उसका कि मतलब जो पानी साफ सुथरा पानी उसमें पनपता है, उसका लार्वा उसमें पनपता है। तो पानी कैसा भी हो, उसे खड़ा नहीं रहने देना, चाहे घर में हो, घर के बाहर हो, गली मोहल्ले में हो, उसमें अपना ही फायदा है, हर किसी का फायदा है।
1: अपना फायदा। कई
0: क्योंकि
1: बार
0: जरा
1: लोग क्या कर,
0: सोचिए, जब मच्छर काटता है तो चार चार पांच पांच दिन बिस्तर पर लेट कर निकल जाते हैं, कमजोरी अलग से होती है, बुरा हाल हो जाता है।
1: हाँ,
0: तो अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेने में हमें क्या दिक्कत है? तो साफ सफाई बहुत जरूरी है, छिड़काव जरूरी है, समय समय पर जो आसपास का एरिया है वो बिल्कुल मतलब साफ होना चाहिए, सफा चट
1: साफ
0: जिसको
1: होना
0: कहते
1: चाहिए।
0: हैं। तो बहुत अच्छा। आप अपने गांव में किस तरह से ख्याल करते हैं अपने घर आंगन में?
1: घर आंगन में हमारे गांव में ऐसा ख्याल रखा, जैसे कि खाली बर्तन होते हैं उसको हम पानी जमा नहीं करते हैं, और जो पीने वाला पानी है उसको हम अच्छी तरह से ढक्कन लगा के हम जो
0: जैसे हमारे पहले
1: जी
0: श्रोता ने बताया, अविनाश भाई ने, कि वो गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं, गाय के गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: जी गाय का गोबर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे जो गाय का गोबर का इस्तेमाल, तो जो अगरबत्ती होती है, अगर मान लो कि मच्छर अगर आ गए तो घर में अगरबत्ती या धूप का उपयोग करते हैं, इससे जो है मच्छर भाग जाते हैं।
0: पहले तो ये करते थे ना कि घर आंगन में गोबर का लेप भी करते थे, अब तो घर पक्के हो गए हैं।
1: अब तो हाँ,
0: हाँ, और
1: बिल्कुल
0: कहीं कहीं जहाँ गांव होंगे पारंपरिक तरीके से।
1: जी। हमारे गांव में कई कई घर से अभी भी गोबर का जो है लेप लगाते हैं आंगन में, और अब तो
0: अच्छा,
1: सीमेंट का यूज करते हैं, लेकिन कई क्षेत्र में हमारे गांव में भी अभी वो परंपरा है गोबर से। और जैसे गौशाला है, उस गौशाला में हमने गोबर से इसका लेप करते हैं। हम
0: ये गोबर के लेप से होता क्या है?
1: गोबर का लेप ऐसा था, जैसे कि दीवार होती है तो दीवार में जो है मिट्टी का प्लस्तर करते हैं, जो जो हम सीमेंट का करते हैं ना, जो मिट्टी का करते हैं, जब मिट्टी में करते तो फिर गोबर से उसको क्या बोलते हैं, हर साल के साल उसको लेप लगाते ताकि वो दीवार जो है बिल्कुल फ्रेश रहे।
0: अच्छा।
1: जी।
0: तो उससे ये भी कहते हैं कि कीड़े मकौड़े नज़दीक नहीं आते
1: नहीं
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: उससे वो नहीं
0: हाँ
1: आते।
0: हाँ तो अच्छी बात है।
1: तो
0: राकेश जी,
1: हमने
0: आपने,
1: अपने घर
0: हाँ
1: में, अपने घर में जितने भी मकान बनाए तो हमने सीमेंट का यूज नहीं किया, मिट्टी के जो है प्लास्टर से हमने क्या होते प्लास्टर किया है दीवार में।
0: बहुत अच्छी बात है। और राकेश जी, अब ये बताइए कि हमसे बात करने के बाद अब कहाँ फोन मिलाएंगे?
1: अभी थोड़ी देर में 10:30 बजे नजीबाबाद आएगा
0: अरे
1: ट्रैफिक
0: अरे
1: वाला।
0: अरे अरे, अच्छा, कमाल है भाई, कमाल है।
1: अभी तो
0: अब
1: धर्मशाला
0: तो
1: और शिमला निपटा दिया
0: हाँ
1: मैंने,
0: हाँ
1: अब
0: आकाशवाणी के
1: नजीबाबाद।
0: सारे सारे चैनल्स जो हैं अब तो भाई डिजिटल हो गए हैं, ऑनलाइन जुड़ गए हैं।
1: जी। तो अभी जो नजीबाबाद, आकाशवाणी शिमला, धर्मशाला और जयपुर, जयपुर वाला जो डॉक्टर वाला था क्या बोलते पत्र के ऊपर टॉपिक था, तो
0: चलिए,
1: उससे
0: बहुत
1: हमने
0: बहुत
1: टॉपिक
0: आपका
1: जी
0: धन्यवाद बात करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू. SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में हम फिर आपके साथ हैं. 10:30 हो चुके हैं. प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और टॉपिक हमारा है कि आसपास रखें साफ सफाई, मच्छर भागे बिना दवाई. हेलो चंडीगढ़.
2: अनिल भाई साहब को यश कुमार वर्मा
1: जी. आइए यश कुमार वर्मा जी, कैसे हैं आप? जी अच्छे रहिए आप. बस हम भी यही दुआएं करते हैं. कहिए क्या कहेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे.
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: बताइए.
2: तो ऐसा है ना जी, जहाँ गंदगी होती है वहाँ तो मच्छर जाते रहते हैं.
1: वो तो मालूम है, ये बताइए करना क्या है.
2: करना ये है कि आग आग आग से. आग आग
1: आग. हेलो
2: जी,
1: आप अगर अनिल भाई अगर खुद नहीं कह पा रहे तो घर में कोई और है उसे बोल दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं.
2: बात करने सकते ना, चेक कर.
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो जल्दी से बता दीजिए क्या कह रहे हैं, हल्का सा बता दीजिए मैं समझ जाऊंगा.
2: ऐसा होता है ना कि जैसे हम पहले छोटे थे ना, तो घर में पापा क्या करते थे, कागज की आग की.
1: अच्छा.
2: मिट्टी तेल कपड़े होते ना जैसे.
1: हाँ हाँ.
2: तो उसको आग लगा देते थे, मच्छर भाग जाते थे.
1: हाँ, पर वो उपाय इतना सुरक्षित नहीं.
2: सुरक्षित नहीं था, लेकिन भाई साहब ऐसा था कि वो ना उस समय ऐसा होता था कि जैसे ना कि हम गंदगी में रहते थे उसमें तभी थे, लेकिन गंदगी रहती नहीं.
1: वैसे एक उपाय और भी है
2: जी,
1: शायद मैं कहाँ तक ठीक हूँ या नहीं हूँ ये तो आप बताएंगे. कपूर जलाकर घर में रखी जाए तो मच्छर कहते हैं कि भाग जाते हैं.
2: भाग जाते
1: ऐसे कुछ हाँ, देसी नुस्खे भी हैं.
2: बिल्कुल बिल्कुल अनिल भाई, मैं तो कह रहा हूँ मक्खी कमरे आ जाती है ना. मेरी मैडम कहती है मक्खी कहाँ से आ गई, मैंने मक्खी जहाँ से आ गई.
1: नहीं अभी तो भाई मच्छरों की बात कर लें, मच्छर ही इतने सारे हैं.
2: अरे मच्छर तो जब आते हैं तब की बात है.
1: हाँ, मक्खी तो तंग ही करती है, मच्छर तो हमें कहीं का नहीं छोड़ता ना. चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यश कुमार वर्मा जी बात करने के लिए. हेलो चंडीगढ़.

0: जी फरमाइए साहब, बोलिए, कुछ तो बोलिए। क्या नाम है आपका जी?
1: विपुल सर, नमस्कार सर।
0: जी
1: मैं
0: नमस्कार
1: सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, सेक्टरी कामन से सर।
0: जी, देखिए आप एकदम से
1: बच्चों
0: बोलते
1: के
0: हैं।
1: लिए सर जो आज
0: जी
1: आपका
0: जी
1: विषय
0: सुरेंद्र
1: बहुत
0: जी,
1: अच्छा है, उन्हें
0: सुरेंद्र
1: बहुत
0: जी,
1: फर्क रहना
0: सुरेंद्र
1: होता है,
0: जी,
1: खासकर
0: सुरेंद्र
1: बारिश के
0: जी,
1: मौसम में। सर
0: सुरेंद्र जी, सुरेंद्र
1: जी,
0: जी, मेरी
1: हाँ
0: आवाज
1: जी,
0: आपको आ रही है?
1: हाँ जी,
0: आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, आप तुरंत बात करते हैं।
1: हाँ जी,
0: और कुछ हमारे श्रोता अभी आपसे पहले फोन
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: मिलाया और हम उन्हें कह रहे हैं, वो बोलते
1: हाँ
0: नहीं।
1: जी, हाँ जी,
0: अच्छा कहिए आप क्या कह रहे हैं।
1: मैंने तो सर यही कहा कि मच्छरों को मतलब बचाव के लिए बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। मच्छर तो वैसे आ ही जाते हैं, तो जो घर की सफाई है ये बहुत जरूरी है। अगर घर में सफाई है तो बाहर ऑटोमेटिक बहुत जरूरी सफाई हो जाएगी, मोहल्ले में सफाई होगी जी तो घर से मच्छर पनपेंगे, इसलिए ताकि वहां गंदगी होगी। अगर पर्दे के पीछे होंगे या कहीं कोने में छुपे हुए होंगे तो हमें उनको मतलब निकालना होगा। उसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि गंदगी ना हो आसपास में घर में।
0: बहुत अच्छी बात कही सुरेंद्र जी आपने।
1: जी,
0: पर्दे के
1: हाँ जी,
0: पीछे कोई बैठा है पर्दा करके, हाँ
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: उसे बाहर लाना है, जरा
1: जी,
0: सामने तो आओ चलिए। हाँ
1: अरे सर बिल्कुल बिल्कुल। ये मच्छर सर दिन भुलाए मेहमान होते हैं
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: ये
0: हाँ
1: जब
0: जी,
1: काटते हैं तो ये 3-4 महीने तक फुर्सत नहीं होती। आदमी इतना कमजोर हो जाता है कि उनको मतलब अब मुश्किल हो जाती है कि क्या कहें कि ये हमारी गलती है कि मच्छरों को हमने दावत दी।
0: सुरेंद्र जी आपने बाकी तमाम बातों के साथ सभी सभी बातें कर रहे हैं। जो
1: हाँ
0: पर्दे के पीछे वाली बात की, ये भी अच्छी लगी, क्योंकि पर्दे
1: हाँ जी,
0: आमतौर पे हमारी नज़र में आते नहीं, जल्दी से याद नहीं आता उन्हें
1: ये
0: हिलाना,
1: दिखते ही
0: साफ
1: नहीं सर,
0: करना।
1: हाँ जी, कहाँ छुपे हुए हैं। जी,
0: तो मच्छर सामने भी आता है, छुपकर वार भी करता
1: बिल्कुल सर,
0: है। ये जो छुपकर वार करते हैं, इन्हें सामने लाना बहुत ज़रूरी है।
1: बहुत सतर्क चाहिए,
0: जी जी
1: सतर्कता
0: जी
1: चाहिए। थैंक
0: शुक्रिया बात करने के लिए।
1: यू सर, थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आपसे बातचीत का सिलसिला जारी है। चूंकि इस प्रोग्राम के प्रायोजक यहीं तक हमारे साथ रहे, तो वो क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
0: वेलकम बैक दोस्तों, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से, FM 107.2 MHz पर यह प्रोग्राम चल रहा है। और अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं, यानी ग्लोबली तौर पर भी ये कार्यक्रम आप जहां कहीं भी हैं आपके साथ है। तो आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और अगले श्रोता से बात करें। हेलो चंडीगढ़ जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
5: मॉर्निंग अनिल जी,
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
5: पर आप हेलो
0: जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
5: सर, मैं किरण बात कर रही हूँ।
0: जी
5: मैं किरण बात कर रही हूँ कुफरी से।
0: हाँ, किरण जी कुफरी से। बीच बीच में आपकी आवाज टूट रही है ना। हाँ अब ठीक है। किरण जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी।
5: सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जितना हम बरसात के मौसम में बच सके उतना ठीक रहेगा। हेलो
0: जी जी जी जी किरण जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ।
5: आ रही हो सर आवाज?
0: हाँ किरण जी बिल्कुल सही आ रही है, आप बोलिए, निश्चिंत रहिए, मैं सुन रहा हूँ।
5: सर सबसे पहला तो हमें मतलब मच्छर भगाने वाली मशीन लगानी चाहिए। अगर

0: मच्छर भगाने वाली मशीन कौन सी?
1: एक सर मैं तो खुद भी ऑल आउट यूज करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, वो यूज करते हैं, लेकिन वो तो देखो जब तक ऑन है तब तक है ना, तो उसमें ज्यादा सांस लेना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं?
1: क्योंकि सर मैं खुद भी यूज करती हूँ, फिर भी मैं दूसरों को एडवाइज कर सकती हूँ।
0: नहीं नहीं, वो तो आपकी मर्जी है, आप जो भी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम साफ सफाई की बात करें तो देखिए वो तो जब तक जल रही है तब तक जो है मच्छर आसपास नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो मच्छर है किस तरह से पनप जाता है और वो ना पनपे इसके लिए आप क्या करेंगे?
1: सर सबसे पहला तो मैं ये करूंगी, जहाँ पे भी हम पानी इकट्ठा देखते हैं हमें वो साफ कर देना चाहिए। चाहे वो सड़क के अड्डे हो, चाहे घर के हो, कहीं भी हो, हमें वो पानी साफ कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही है, पानी इकट्ठा नहीं रहने देना।
1: जी सर जी। और जैसे मतलब कई दिनों से पानी जो होता है हमने स्टोर किया हुआ वो भी बदल देना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा किरण जी, ये बताइए कि कुफरी में आपके गांव कौन सा आपका, कि कुफरी शहर है?
1: सर कुफरी से 7 किलोमीटर आगे मुंडा घाट गांव पड़ता है।
0: मुंडा घाट, तो आपके गांव में भी मच्छर होते हैं?
1: जी सर होते हैं, लेकिन हम सावधानी बरतते हैं।
0: हाँ अच्छा ठीक, अच्छी बात है। तो देखिए इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में नगर निगम की जो गाड़ी आती है कभी कभी, जो मतलब धुआं करती है पूरे मोहल्ले में, मच्छर की दवाई छिड़कती है, तो वो दवाई का जो धुआं है वो आपके घर के भीतर आए, इसके लिए आपको उस समय कुछ देर के लिए घर के दरवाजे खोल देने चाहिए, खिड़कियां खोल देनी चाहिए।
1: जी सर।
0: हाँ, ताकि वो जो दवाई का धुआं है वो आपके घर के भीतर आए। कई लोग उससे डर जाते हैं, उल्टा खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। क्या कह रहे हैं आप? आपके भी यहां गाड़ी आती कोई? जी शुक्रिया किरण जी, मुझे लगता है कि अब बीच बीच में संपर्क टूट रहा है। आपने इस प्रोग्राम में फोन मिलाया, इस टॉपिक पर बात की और कुफरी से आप हमें फोन करना नहीं भूलते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1 to 3 minute का वीडियो बनाओ और शो केस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31st अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज के हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आसपास रखें साफ सफाई, मच्छर भागे बिना दवाई, ये है हमारा आज का टॉपिक। और हमारे श्रोता बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। अच्छा लगता है जब आप अपना कोई अनुभव इस प्रोग्राम में शेयर करते हैं। जब हम टॉपिक आपके सामने रखते हैं या आपको बोलने के लिए देते हैं तो उसमें जो चीज़ें सबको मालूम हैं वो तो बात अलग है, वो तो हो ही जाती हैं, लेकिन आपका इस किसी खास टॉपिक को लेकर क्या अनुभव है, क्या कोई मार्गदर्शन है जो आप सभी का कर सकते हैं, कोई नई दिशा दिखा सकते हैं, कोई नया रास्ता सुझा सकते हैं, तो इस प्रोग्राम का मकसद वो पूरा हो जाता है। तो अच्छा लगता है जब आप अपने अनुभव इस प्रोग्राम में किसी भी टॉपिक के लिए हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हेलो चंडीगढ़।
3: नमस्कार सर जी।
2: जी नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
3: सर मैं दीपक बोल रहा हूँ खरड़ से।
2: जी दीपक जी फरमाइए।
3: सर आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, जो ये सीजन चल रहा है इसमें बहुत हमें सावधानी बरतनी चाहिए।
2: जी
3: वो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे लिए

0: बहुत हेल्पफुल हुआ है।
1: हम्म।
0: मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम था मलेरिया वालों का, जो एंटी मलेरिया वाली टीम होती है।
1: जी
0: तो मेरे बच्चे छोटे हैं, 5th क्लास में है, एक 2nd क्लास में है। तो उनको एक बहुत अच्छी जानकारी मिली कि जो भी हमारे घर में पानी होता है, जैसे मनी प्लांट होता है, उसको वो हर हफ्ते चेंज करते हैं। अब वो मच्छर का सीजन है नहीं है तो एक कहीं कछुआ रख लेते हैं कटोरी में, उसमें भी पानी भर के रखा होता है।
1: अच्छा, कछुए में।
0: तो बल्कि कटोरी में कछुए को रखा होता है पानी में अंदर।
1: अच्छा।
0: मतलब ये आर्टिफिशियल सी चीजें होती है जो डेकोरेशन
1: हाँ
0: के
1: अच्छा,
0: लिए।
1: फिर
0: तो
1: ठीक है, फिर ठीक है।
0: बच्चों को खुद ही आदत पड़ गई है, उस स्कूल का इतना इम्पैक्ट हुआ उसके लेक्चर का, वो खुद ही साफ सफाई रखते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ जी,
1: और यही तो
0: और
1: वो
0: पूरी
1: उम्र
0: बाजू
1: है।
0: के कपड़े पहनते हैं
1: हाँ
0: वो, उनको
1: हाँ
0: पूरा इम्पैक्ट पड़ा उस चीज का।
1: जी। तो ये तो हुई बच्चों की बात। अब दीपक भाई की बात कर रहे हैं, तो दीपक भाई अपने घर में कैसे ख्याल रखते हैं?
0: सर, मेरे को भी उन्होंने बताया है, जैसे कई चीजें बताई हैं, कूलर में पानी चेंज करना, वो मैं अपने आप से कर देता हूँ उसको 1 हफ्ते के अंदर। जो नारियल पानी पीने के लिए लेके आता हूँ उसको अच्छे से तोड़ के डिस्पोज करता हूँ, उसको ऐसे नहीं फेंकता हूँ मैं। हाँ
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आप। जो नारियल का वो रह जाता है पानी पीने
0: जी,
1: के
0: हाँ
1: बाद, उसका खोल जो रह जाता है,
0: जी,
1: उसे
0: और जो
1: आप
0: जोमेटो
1: प्रॉपर
0: स्विगी
1: डिस्पोज
0: से जो
1: ऑफ करते हैं।
0: प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं उनको भी मैं तोड़ के ही फेंकता हूँ।
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: सारी
1: जी
0: चीजें मेरे को उन्होंने बताई थी, एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मैं सावधानी बरतता हूँ अपने। हाँ
1: मतलब बहुत अच्छी बात लगी कि बच्चे जो हैं इतने जागरूक हैं इस मामले में,
0: जी सर,
1: कि वो घर में खुद बताते हैं कि पापा मामा ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इस तरह से करना है।
0: हाँ जी। तो
1: तो
0: उन्होंने
1: ये
0: मेरे को उसी दिन
1: हाँ
0: बताया था कि पापा जो नारियल लेके आते हैं उसको तोड़ के फेंकना है, तो मैं तोड़ के ही फेंकता हूँ उस दिन से।
1: वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो घर में जागरूकता का जो दीपक है वो जगमगा रहा
0: जी सर,
1: है? और हमें बड़ा अच्छा लगा। दीपक भाई, आप खरड़ कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं सर खरड़ अनाज मंडी के पास से बोल रहा हूँ।
1: अच्छा, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। और जैसा आपने बताया कि आपके बच्चे इस मामले में कितने जागरूक हैं, वो इसी वजह से कि यही उम्र होती है उन्हें सिखाने की,
0: जी सर, जी जी
1: साफ सफाई की। अभी से उनको आदत होगी साफ सफाई की, स्वच्छता के बारे में सही जानकारी होगी, तो
0: जी सर,
1: उनकी आदत में अपने आप ये शामिल हो जाएगी।
0: जी सर,
1: और अच्छी आदतें बनाने से बनती हैं।
0: जी सर,
1: जी, शुक्रिया आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: जी हेलो चंडीगढ़
2: हेलो,
1: जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए साहब।
2: गांव गोदाम है जी, और तारिक चंद्र शर्मा नाम है साहब।
1: तारिक चंद्र शर्मा।
2: हाँ जी, गोदाम
1: गांव का नाम बताया, राज्य का नाम। कालका
2: कालका के पास है जी।
1: के पास है, क्या बात है।
2: हाँ जी,
1: कैसा मौसम है कालका में?
2: बस ठीक है जी।
1: जी, बारिश हुई अच्छी? अच्छा जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
2: बस कहना यही है जी, सबको समझ है, तो गोहा वगैरह लगा के आग रख देना चाहिए, धुआं वगैरह हो जाता है उससे, उससे धुएं से मच्छर नहीं भाग मतलब आएगा। अच्छा, जो उसमें
1: अच्छा
2: नालियां हैं या कुछ भी है वहां
1: हाँ
2: पानी नहीं रहना चाहिए, साफ सफाई रखनी के
1: वैसे
2: कूलर
1: तो
2: वगैरह और हर एक चीज को
1: हाँ,
2: साफ सफाई रखनी।
1: आजकल खुली नालियां तो कम दिखाई देती हैं, लेकिन जहां कहीं भी हैं अगर उन्हें
2: हाँ
1: भी
2: जी,
1: प्रॉपरली साफ कर दिया जाए,
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: है ना, उसमें जो कुछ मिट्टी का तेल या कोई और दवाई उसमें छिड़क दी जाए, तो
2: हाँ जी,
1: मच्छर जो हैं वो नहीं आएंगे।
2: हाँ जी, अपने आप भी ध्यान रखना चाहिए, हर एक इंसान को दिमाग है, हर एक के पास है, अपने आप
1: हाँ,
2: भी समझना चाहिए जी।
1: ये तो मौका ढूंढता है पनपने के लिए
2: हाँ जी, हाँ जी, अगर
1: इसको
2: ये
1: एक।
2: मौका
1: हाँ
2: ढूंढता है तो
1: हाँ
2: हमारा भी फर्ज है कि हम भी मौका ढूंढे अपना,
1: बिल्कुल
2: हमारा भी फर्ज है ना, हम भी साफ सफाई की तरफ ध्यान दें।
1: बिल्कुल। और साफ सफाई का ध्यान पूरा हमें रखना है, और
2: हाँ जी,
1: हमें आपका शुक्रिया अदा करना है। इस प्रोग्राम
2: हाँ
1: में
2: जी,
1: आपने हमसे बात की है और इस टॉपिक के बारे में बताया है, और जहां आपने
2: ठीक है,
1: बात की ना
2: हाँ
1: कि सब जानते हैं, सबको समझ है,
2: ठीक है जी,
1: तो
2: हर एक को समझ है जी,
1: अपनी
2: आजकल
1: इस
2: कोई
1: प्रोग्राम में
2: बच्चा तो है
1: अपनी
2: नहीं।
1: अपनी समझ का थोड़ा सा हिस्सा अगर बांट
2: हाँ जी,
1: लिया जाए तो सबके
2: हाँ
1: काम आ
2: जी,
1: जाता है।
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: जी, शुक्रिया।

0: वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम में एक और श्रोता ऑनलाइन हैं। अब प्रोग्राम अपनी आखिरी जो है उसकी तरफ रवाना है, मंजिल की ओर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए जी। हेलो जी, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: हेलो अनिल साहब जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, वेलकम, नाम बताइए, जगह का नाम।
1: काफी दिनों बाद 5-6 महीने में फोन लगा है सर। मैं 2 महीने बाद ही करती हूँ वैसे अपनी कॉल।
0: हाँ तो ऐसी कोई बात नहीं,
1: नंबर लगे।
0: 2 महीने बाद आप क्यों करती हैं?
1: वो इसलिए किसी और को भी चांस मिले, उनके विचार सुनने का हमें भी मिले कुछ।
0: 2 महीने तो बहुत ज्यादा है।
1: अच्छी बात है।
0: हाँ अच्छा, क्या नाम बताया आपने, कहाँ से बोल रही हैं?
1: वीना सिंघानिया, बाला कैंट से बोल रही हूँ सर।
0: अच्छा अच्छा, वीना सिंघानिया।
1: सिंघानिया जी,
0: तो कहिए क्या कहना चाहेंगी जल्दी से।
1: मैं ये कहूंगी जब आप सफाई कर लेते, जालियाँ नहीं होती हैं वॉशरूम की, जाए वहाँ पे काली इट छिड़क दे थोड़ी सी, जहाँ पे वो सिंक है वॉश बेसिन है वहाँ उन पे छिड़क दे। और जो बाहर सरकारी जाली है सड़कों पे, जिनके घर है हमारे यहाँ से घर, तो वहाँ पे काला ईट छिड़क देते हैं। और बाकी ऑल आउट 1 घंटा, जैसे सोने से 3 घंटे पहले ऑल आउट ऑन कर दो, जब आप उन कमरों में नहीं हो, बेडरूम में नहीं हो, जहाँ पे आप लिविंग एरिया वहाँ पे या लॉबी जाओ, वहाँ के ऑल आउट ऑन कर दो कम से कम 3 घंटा पहले। जब आपको स्मेल लगने लग जाए उस कमरे में, सारे दरवाजे बंद कर दीजिए। और ना तो आपको रात को कोई ऐसा दुख होगा कि आपको स्मेलिंग पावर से आपको अंदर सांस के जरिए जाएगी। ऑल आउट ऑफ करके आराम से सो, बिल्कुल।
0: वाह वीना जी, बहुत
1: सफाई
0: अच्छी
1: भी
0: बात
1: रहेगी और खर्चा भी नहीं बचेगा, सारी रात ऑल आउट ऑन करने से भी बचोगे आप
0: जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
1: हम ये भी नहीं सोचते कि सफाई कर्मचारी आएंगे तो सड़कें साफ करेंगे, अपना आंगन बुहार देना चाहिए, एक साइड पे इकट्ठा कर दो ताकि वो ले जाए उठा।
0: बिल्कुल सही, और
1: उन्हीं के भरोसे हाँ। रहते हैं, हमारे अंबाला में तो पता है स्ट्राइक चल रही है, तो हम अपना आंगन साफ नहीं रखेंगे क्या?
0: बिल्कुल सही,
1: हमें वैसे भी रखना जाली है तो उन पर काला ईट छिड़कते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं, हफ्ते में एक दिन खोलता हुआ गर्म पानी फिलाइन डाल के ना
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: वो
0: जी
1: खोलता खोलता तो, पानी उन जालियों में डाल रहे ताकि कीड़े कांटे ना आए।
0: हाँ, हाँ, हाँ, और बिना जी
1: नेल्स ज्यादा होते हैं।
0: हाँ, इससे पता चलता है कि आप कितने जागरूक हैं इस मामले में। और देखिए सबसे बड़ी बात है, घर जितना मर्जी अच्छा हो, जितनी मर्जी अच्छी अच्छी चीजें हो, अगर वो साफ नहीं होगा, सुथरा नहीं होगा, तो मच्छर तो भाई आएंगे।
1: जी जी जी,
0: शुक्रिया बात करने
1: के लिए। सरकार केरोसिन ऑयल कहते हैं, हम तो काला ईट छिड़क देते हैं, सबको यही बताते हैं, कहीं की वॉशरूम वो फ्लश में कहते कीड़े आ गए, स्नेल्स आ गए, ये आ गए, अभी कैसे है? गर्म पानी खोलता हूँ, हफ्ते में एक दिन डालो आप फ्लश में
0: जी। शुक्रिया जी,
1: सांप क्या उसका बच्चा भी नहीं आएगा।
0: शुक्रिया जी बात करने के लिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।

और दोस्तों, अपना घर सबको प्यारा होता है, और अपने घर को प्यारा बनाने के लिए, मच्छरों से बचाने के लिए अपने घर की साफ सफाई रखें। घर में भी, बाहर भी, आंगन में, जहां कहीं भी आपको नजर आता है, क्योंकि ये सफाई ही हमारे लिए बहुत काम की होती है। और मच्छरों के इस मौसम में मच्छरों को भगाने का एक बिल्कुल नायाब और सही तरीका है। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। इस प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
1: हेलो चंडीगढ़।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
4: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
3: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
4: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
1: दोस्तों, परवरिश एक ऐसा विषय है जिसको लेकर एक परिवार में बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। परवरिश केवल यही नहीं है कि उनकी जरूरतों को पूरा करें, बल्कि उनके अंदर एमए और समाज में एक आदर्श बना सकें। और परवरिश की पूरी जिम्मेदारी एक माता पिता की होती है। बच्चों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा कोई तोहफा है तो वो है पेरेंट्स, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के पीछे खड़े रहते हैं। कुछ अच्छा होने पर खुशियां बांटते हैं तो मुश्किल आने पर दीवार की तरह अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हैं। शायद इसलिए ही कहा जाता है कि किसी भी इंसान को उनके माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। परवरिश कैसी हुई है उसका आरोप और पुरस्कार दोनों माता पिता को ही जाता है। कई बार आपने ये वाक्य लोगों के मुंह से सुना भी होगा, जब कोई बच्चा गलती करता है तो लोग कहते हैं कि तेरे माता पिता ने तुझे यही सिखाया है। और जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो हम ये भी कहते हुए सुनते हैं कि इसके माता पिता ने इसे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। बच्चों को सीखना सिखाना एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसकी न्यूनतम समझ माता पिता एवं अभी

अभिभावकों को होनी अनिवार्य है। इस समय के अभाव में वे बच्चों पर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब परिणाम अनुकूल नहीं आते, बच्चे बिगड़ाए निकलते हैं या उद्दंड हो जाते हैं या कहना नहीं मानते, तो फिर अपनी संतानों पर ही वे विश्वास खो देते हैं। उन्हें सबके सामने डांटते कोसते फिरते हैं। ऐसे में स्थिति सुधरती नहीं है बल्कि और बिगड़ जाती है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बच्चों के सुधार की संभावनाएं हाथ से निकल जाती है और वे अपने ढंग से मनमाने तरीकों से जीवन बसर के लिए छोड़ दिए जाते हैं।

0: आज के इस कार्यक्रम में इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। तो आइए हम सुनते हैं इस कहानी को जो माता पिता की परवरिश पर आधारित है।
1: एक मोहल्ले में एक शरारती बच्चा रहता था जिसकी शरारत से पूरा मोहल्ला परेशान था। उस बच्चे का नाम राजू था। बच्चे की शरारतें भी ऐसी थीं कि लोगों के झगड़े हो जाएं। राजू कभी किसी की साइकिल पंचर कर देता तो कभी किसी के घर की बैल बजाकर भाग जाता। हालांकि राजू इतना छोटा नहीं था कि उसकी शरारतों को नजरअंदाज कर दिया जाए। मोहल्ले वाले उसकी शरारतों से काफी परेशान हो चुके थे। राजू की शरारतों पर मोहल्ले वाले उसे डांटते थे और कभी कभी तो मार भी देते थे। राजू के पापा जब ऑफिस से शाम को घर आते तो राजू पड़ोसियों की शिकायत अपने पापा से करता कि आज बगल वाली आंटी ने उसे खूब डांटा, सब्जी वाली बुढ़िया ने झाड़ू मारी। राजू के पापा जब मोहल्ले वालों से बात करने जाते तो वे उन्हें ही खूब उल्टा सीधा सुना देते। राजू के पापा भी राजू की शरारतों से बहुत परेशान हो चुके थे। राजू के पापा ने खूब सोचा कि आखिर कैसे राजू को समझाया जाए कि उसकी शरारतें सभी को परेशान करती हैं और वह गलत कर रहा है। बहुत सोचने के बाद राजू के पापा ने फैसला लिया कि वे आज दिन भर राजू के साथ रहकर उसकी शरारतों में उसका साथ देंगे। दिन शुरू होते ही राजू की शरारतें शुरू हो गईं। सबसे पहले उसने बगल वाले शर्मा जी का अखबार छुपा दिया। जब शर्मा जी गुस्से से तिलमिलाते हुए बाहर आए तो राजू उन्हें देखकर खूब हंसे। राजू के साथ उसके पापा भी खूब हंस रहे थे। उन्हें देख शर्मा जी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शर्मा जी ने दोनों को खूब सुनाया पर दोनों हंसते रहे। जब दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा तो शर्मा जी ही गुस्से से पैर पीटते हुए अंदर चले गए। अब मोहल्ले वाले आपस में चर्चा करने लगे कि पहले तो सिर्फ राजू ही उनकी नाक में दम किए हुए था, अब तो उसका बाप भी शुरू हो गया है। राजू ने अपने पापा के साथ दिन भर खूब शरारत की। राजू के पापा ने शाम को कहा कि आज हमने दिन भर खूब शरारत की, बड़ा मजा आया। राजू ने तपाक से कहा, हाँ पापा। फिर राजू के पापा ने कहा कि आज मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने शरारत की, लेकिन कल मैं शरारत करूंगा और तुम मेरा साथ देना। राजू ने कहा, ठीक है पापा। राजू को बहुत मजा आया कि उसके पापा उसके साथ शरारत कर रहे थे। दूसरे दिन राजू के पापा राजू को उस सब्जी वाली बुढ़िया के पास लेकर गए जिसकी वह सब्जियां फेंक दिया करता था या चप्पल चुराकर भाग जाया करता था, जिसके बाद बुढ़िया उसे मारने दौड़ती थी। राजू ने सोचा पापा भी वही शरारत करेंगे, लेकिन पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया। राजू के पापा ने कुछ और ही किया। जैसी ही बुढ़िया सब्जियों से दूर गई

राजू के पापा ने नजर बचाकर राजू के साथ उसकी सारी सब्जियां साफ की और ठीक तरीके से रेडी पर सजा दी। जैसे ही बुढ़िया आई और देखा तो वह बहुत खुश हुई और इधर उधर देखने लगी कि किसने यह काम किया। जब सब्जी वाली बुढ़िया की थोड़ी आंख लगी तो राजू के पापा ने उसकी टूटी चप्पल ठीक करवा कर रख दी। जैसे ही बुढ़िया ने देखा तो उसकी खुशी से आंख भर आई। भगवान से उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, जिसने भी मेरे लिए इतना किया उसे हमेशा खुश रखना। शाम तक राजू के पापा ने बुढ़िया की खूब मदद की, जिसमें राजू ने भरपूर साथ दिया। राजू को छिपकर ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज वह शरारत नहीं बल्कि मदद कर रहा है। दिन ढल गया था, बुढ़िया अपनी सब्जी की दुकान समेट रही थी। तब राजू के पापा उसके पास गए और कहा कि आपको यह नहीं जानना कि आज दिन भर जो हुआ वो किसने किया। बुढ़िया ने तत्काल कहा, हाँ मुझे जानना है कि किसने मेरी मदद की। तब राजू के पापा ने राजू को आवाज दी। राजू जैसे ही आया तो उसके पापा ने कहा कि यह सब इसने किया है। राजू को लगा आज फिर उसकी झाड़ू से पिटाई होगी, तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बुढ़िया ने उसे कसकर गले लगा लिया और चॉकलेट भी दी। राजू बहुत खुश हुआ। राजू अपने पापा के साथ घर आ गया था। आज राजू चुप बैठा था। राजू के पापा ने पूछा, आज जो भी किया उसमें तुम्हें मजा आया? तो राजू ने जवाब दिया, मजा भी आया और चॉकलेट भी मिली। तब उन्होंने राजू को समझाया कि तुम जब दिन भर शरारत करते हो, लोग तुम्हें डांटते मारते हैं और तुम शाम को उनकी शिकायत मुझसे करते हो, लेकिन आज तुमने शरारत नहीं बल्कि उनकी मदद की, तो सभी ने तुम्हें प्यार किया और चॉकलेट भी दी। राजू सारी बातें समझ चुका था। आज के दौर के बच्चे बहुत समझदार हैं, बस संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज के दौर के माँ बाप अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। बच्चों को समय दें और उन्हें अच्छे बुरे की समझ के साथ संस्कार जरूर दें।

प्रिय श्रोताओं, परवरिश माता पिता की जिम्मेदारी होती है और ये जिम्मेदारी माता पिता अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए पूरा करते हैं, जिसमें ये चीज महत्वपूर्ण होती है कि जीवन में उन्हें किस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। बच्चों का जो फर्स्ट स्कूल है उनका घर होता है, क्योंकि वो अपने माता पिता को देखते हैं कि उनके माता पिता किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि माता पिता उनके पहले शिक्षक होते हैं। माता पिता का आपस का प्रेम उनको बहुत सी शिक्षाएं देता है, किस तरीके से वो आपस में बातचीत करते हैं, उनका कैसा रिलेशनशिप है, और माता पिता ही उनके लिए उनके जीवन में एग्जाम्पल होते हैं और उसी के द्वारा वो भविष्य में एक अच्छा एग्जाम्पल बन पाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सच बोलें तो आपको भी उनके सामने सच बोलने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि वो किसी भी प्रकार के अपशब्द अपने मुंह से ना निकालें तो आपको भी पहले उन आदतों को सुधारने की आवश्यकता है। कई बार बच्चे अपने पिता को देखकर या अपनी माता को देखकर गलत चीज़ों को अपने जीवन में सीख लेते हैं और भविष्य में फिर वो उन्हीं चीज़ों को करते हैं, तो इसलिए माता पिता को एक अच्छा उदाहरण बनने की आवश्यकता है ताकि उनके बच्चे भी समाज में एक अच्छा उदाहरण दूसरों के लिए बन सके। इसके साथ साथ बच्चों को स्वयं काम करने के मौके दें, जीवन को समझने व दूसरों के साथ अंतक्रिया का अवसर दें। जीवन में पढ़ाई एवं नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, जैसा कि कुछ अभिभावक मान बैठते हैं, वह बच्चों को इसी दायरे में समेटे रखते हैं।

0: उनकी शैक्षणिक योग्यता के साथ शारीरिक, मानसिक विकास, बौद्धिक विस्तार, भावनात्मक संतुलन आदि भी महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही जीवन मूल्यों के रूप में आध्यात्मिक पक्ष तो सबसे अहम ही है, जिस ओर अधिकांश लोग सचेष्ट नहीं रहते। इसलिए बच्चों के वास्तविक विकास के लिए उचित परिवेश देना, वातावरण तैयार करना माता पिता एवं अभिभावकों का कर्तव्य है। उनके विकास में जो भी अवरोधक तत्व हों, उनसे बचाव करना भी महत्वपूर्ण है।
1: तो श्रोताओं, अब समय हो चला है कि हम आपको अपने एक श्रोता, जिनका नाम रामदेव प्रसाद है, जो कि नालंदा से है, इन्होंने एक कविता लिखी है, उस कविता से हम आपको रूबरू कराएं। तो आपने हमारा पिछला कार्यक्रम तो सुना होगा, जो कि तलाक के ऊपर था, और ये कविता भी तलाक के ऊपर ही लिखी गई है। तो चलिए आइए सुनते हैं। भारतीय शादी है स्थाई, तलाक न है मानवताई। शादी एक अटूट संस्कार, अपना का पावे सुख सारा। कुवचन नशा पान जब धारण, कुवचन नशा पान जब धारण, तब ही तलाक छूता चरण। आपस में बोल वचन मिठास, पति पत्नी में कभी ना खरास। जो जन कभी ना करे तलाक, उसका पति राम संपाक। राम देव बिनती कर जोरी, तलाक से ही अति दुख तोरी। तो श्रोताओ, सुना आपने। अगर आप भी हमारे साथ चाहते हैं कि कोई कहानी हम अपने कार्यक्रम में सुनाएं, तो आप उस कहानी को, उस कविता को हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर हम आपसे बात करें, तो आप हमें लिख भेजें।
2: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं, अब समय है फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम जिसका नाम है म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी रेडियो संगिनी बबिता कपूर। दोस्तों, फिल्म संगीत पर आधारित यूं तो कितने ही कार्यक्रम हैं, लेकिन म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस है सबसे खास। और क्यों है ये खास? क्योंकि इसमें हम शामिल करते हैं आपकी फरमाइशों पर आधारित गीत और आपके नाम भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस कार्यक्रम की। और सबसे पहले हम आपको गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी, आवाज़ है किशोर कुमार की। और इस गीत को सुनना चाहते हैं टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से और शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज के साथ बिट्टा बजाज भी।

प्रेम पुजारी फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं महबूबा फिल्म का गीत, और इस गीत को सुनना चाहते हैं सतीश कुमार, सुनीता कुमारी, कृष्णा शर्मा, सेक्टर 42B चंडीगढ़ से। आइए सुनते हैं महबूबा फिल्म का ये गीत, आवाज है लता मंगेशकर की।

0: दोस्तों, आपकी पसंद के गीत और आपकी पसंद का ये कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस जो हम लेकर आते हैं सप्ताह में दो दिन, शुक्रवार और शनिवार। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम के बाकी गीत आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का अगला गीत हम

को सुनवा रहे हैं फिल्म क्रांति से, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है सुखचैन सिंह पवार सोनौर से, और इसके साथ साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं हरमनजोत कौर, मनजोत कौर और जोबन प्रीत सिंह पवार। आइए सुनते हैं उनकी पसंद पर ये गीत।

दोस्तों, म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस का ये कार्यक्रम हमारे प्यारे श्रोताओं के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, कुछ धीमे, कुछ चुलबुले, कुछ उदास तो कुछ तकरार और प्यार भरे गीतों का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म का ये गीत। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और इसके साथ साथ सेक्टर 25 पंचकुला से मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद कादिर, अजलान बाबू और ललिता पाल, हुकुमचंद, ईशु, नीशु, दुधला मंडी, अंबाला कैंट से। आइए सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म का ये गीत, और गीत को गाया है मोहम्मद रफी और एस बलबीर ने।

हंसते जख्म फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं फिल्म हम दोनों का मोहम्मद रफी जी द्वारा गाया गया ये गीत। और इस गीत को सुनना चाहते हैं पंचकुला सेक्टर 21 से मोहम्मद अनस मोहम्मद अरहान और परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई महेश संघई प्रज्ञेश संघई और प्रितेश संघई। आइए सुनते हैं हम दोनों फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। अगला गीत जो हमें लिख भेजा है उनकी फरमाइश की है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबिता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने। वे सुनना चाहते हैं फिल्म लोफर का गीत, बहुत ही प्रचलित गीत रहा है ये और आज भी प्रचलित है। मोहम्मद रफी की आवाज में आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस के बाकी गीत आपको सुनवाएंगे इस संदेश के बाद।
1: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप आनंद ले रहे हैं अपने ही भेजे हुए गीतों का। कार्यक्रम है म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। आइए अब सुनते हैं मिलन फिल्म का ये गीत जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, देवांशु गुलाटी, चित्रांशु गुलाटी और दीपांशु गुलाटी ने सेक्टर 9 पंचकुला से।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके भेजे गीत इस कार्यक्रम में शामिल करें, लेकिन वक्त के आगे हमारी कम ही चलती है। लेकिन फिर भी आप निराश ना हों, क्योंकि गीत न सही आपके नाम जरूर हम शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साथी फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष ने, और खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

साथी फिल्म के इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म का गीत। आवाज है एसपी बाला सुब्रमण्यम की और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है पवन कनौजिया, वंदना कनौजिया, गरिमा कनौजिया ने श्री आनंदपुर साहब से। और इसके साथ साथ कुछ और नाम है, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सी टी दीवाना और आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा पंचकुला सेक्टर 11 से, अतुल शर्मा, परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। देखिए आपकी शिकायतें दूर किए देते हैं और सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

हम और आप यूं ही सुनते सुनाते रहें ये गीत म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का। आज का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो संगनी बबीता कपूर के संग। अब दीजिए इजाजत और सुनते रहिए। नमस्कार।

0: और इस गीत के साथ ही म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का ये सफर अब समाप्त होता है।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।

हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको लिए चलते हैं हिंदी समाचारों के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू

0: शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615 जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं।
1: यादें फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सुनिधि चौहान और महालक्ष्मी की आवाजों में प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटी सी अंतराल का।

आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1 to 3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।

وقت جیسے ٹھہر گیا ہے یہی ہر طرف ایک عجب اداسی ہے.

0: अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बागवान फिल्म से। समीर ने इसे लिखा, आदेश श्रीवास्तव का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जहां इंतजार है तड़प है, ऐसे गीत हम आपको आज इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत बॉबी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: قیامت سے قیامت تک، یہ تھا فلم کا نام الکا یاگنک۔ ادت نارائن کی آوازوں میں یہ گیت ابھی آپ سن رہے تھے۔ مجروح سلطان پوری نے اسے لکھا اور آنند ملن کا سنگیت۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام یادوں کی محفل یہیں سمپن ہوا۔
1: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
2: हे चंडीगढ़, दिस इज सहज सबरवाल, एन ऑथर, इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर, यूथ आइकन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी सिटी में भी कोई ऐसी जगह है या कहानी है, ट्रेडिशन या टैलेंट जो इंडिया को पता होना चाहिए? देन दिस इज अ चांस फॉर यू ऑल। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में आप 1 से 3 मिनट की अपनी

0: वीडियो बनाएं और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने बताइए। बस आपको क्या करना है कि माई वेव्स पर आपको लॉगिन करना है और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक आपने अपलोड करनी है। डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर टू, सो यू क्रिएट देन पोस्ट देन यू हैव टू स्प्रेड इट इन द होल इंडिया। थैंक यू।
1: श्रोताओ, प्रस्तुत है अब से लेकर रात 11 बजे तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से और उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से। कुछ हिंदी फिल्मी गीत आप सुनेंगे 1:15 पर और शाम 5:10 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम में।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम समाचार रिले करेंगे 2:15 और शाम 5 बजे हिंदी में, उसके बाद शाम 6 बजे, रात 8:45 पर और रात 11 बजे हिंदी समाचार फिर से प्रसारित किए जाएंगे। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम गीतों भरी कहानी, और कहानी है तितलियों के देश में, लेखिका उर्मिला शिरीष।

प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर, और प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:30। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं पहले 6:10 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से। अमृतवाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 6:30। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:47 पर, और सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:00। हवा महल कार्यक्रम में आज रात 8:00 सुनिए झटकी, विदेशी समधी, लेखक हैं एस अतहर अली। चित्रलोक कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:15 पर, और 9:00 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। छाया गीत ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 10:00, और उससे पहले रात 9:30 पर आज के फनकार में आज सुनिए अरुणा ईरानी पर केंद्रित कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से और उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट के अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे तालमेल वाले सिस्टम सरकार के काम करने के तरीके का स्वाभाविक हिस्सा बनने चाहिए। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर गुरुग्राम विश्वविद्यालय में जेन जी उद्यमियों के साथ सीधी बातचीत कर रहे हैं। इस सम्मेलन में युवा उद्यमी, निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख लोग भी भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को पारंपरिक रूप से नौकरी तलाशने के बजाय उद्यम खड़ा करने और रोजगार पैदा करने की दिशा में प्रेरित करना है। युवा उद्यमी चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को गत 12 वर्षों में देश में आए बदलाव से परिचित कराया और मजबूत इच्छा शक्ति को सफलता का मंत्र बताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम के दौरान सफल युवा उद्यमी न केवल अपना स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं, बल्कि उन्हें फंड जुटाने और अपने वेंचर के लिए तकनीकी सहायता पाने जैसे विभिन्न पहलुओं पर जानकारी भी दे रहे हैं। शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज पलवल जिले की 4 टीमें कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और चरखी दादरी के लिए रवाना हुई। जाने से पहले सहायक मौलिक शिक्षा अधिकारी जसवीर तेवतिया ने खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री जसवीर तेवतिया ने बताया कि पलवल जिले की कबड्डी, फुटबॉल, ताइक्वांडो और वुशु की टीम राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है।
2: आज हमारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए जो पुलिस टूर्नामेंट चल रहे हैं उनकी टीमें जा रही हैं, जिसमें हमारे कबड्डी के तीनों ग्रुप हैं, U14, U17, U19, वॉलीबॉल के हैं, नेटबॉल के हैं, ताइक्वांडो है और वुशु है। ये हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जा रही हैं, जिसमें हम कुरुक्षेत्र हैं, रेवाड़ी है, चरखी दादरी। हमारे जो कल टूर्नामेंट चल रहे थे उसमें बॉक्सिंग में हमारे 5 मेडल अब तक जिला पलवल को मिल चुके हैं।
1: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 9 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने और 1 उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने की मंजूरी प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ नूह जिले को मिलेगा। जिन गांव में 7 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे उनमें रानिका, देवला, नंगली, महू, गौधोला, लफूरी, बड़ेड और चीला गांव शामिल हैं। इसके अलावा रेवाड़ी जिला के गांव भांडोर तथा सिरसा जिला के गांव मोचीवाली में भी 1-1 नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। वहीं गुरुग्राम जिले के गांव रणसीका स्थित मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाकर उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील किया जाएगा। जींद नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगों को लेकर जारी संवाद प्रक्रिया के तहत सर्व कर्मचारी संघ ने जींद शहर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक डॉ. कृष्ण मीडा को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वे आगामी विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष उनकी सभी जायज मांगों को मजबूती से रखेंगे। डॉक्टर कृष्ण मीडा विधानसभा उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि वे अपने निजी कोष से अग्निशमन विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को एक

के 1,00,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सत्र के तुरंत बाद या आगामी मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलकर इस विषय का स्थायी और सकारात्मक समाधान निकलने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज पंजाब बंद का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि हरियाणा से कोई भी बस पंजाब की ओर नहीं जा रही, सभी बसें अम्बाला में ही खड़ी हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹੈ। ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਨੇ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਐ। ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:40 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
2: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
2: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म का गीत। समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत और आवाज, अनुराधा पौडवाल की।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य हैं। आज ही अपनाएं BSNL।
3: हम आपके हैं कौन, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में देव कोहली का लिखा ये गीत। संगीत तैयार किया है राम लक्ष्मण ने।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में आइए अब सुनते हैं दिल है कि मानता नहीं इस फिल्म का ये गीत. गीत को लिखा है फैज अनवर ने और संगीत नदीम श्रवण का.

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: बड़े दिल वाला ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुरीला सफर आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं इंतज़ार की। आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं इंतज़ार वाले। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब कभी हम घूमने जाते हैं तो मैं और मेरा मित्र, या तो मुझे काम आ जाता है तो वो इंतज़ार करता है, उसे बहुत काम आ जाता है तो मुझे बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। थोड़ा चिढ़ ज़रूर जाता हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे पर चिढ़ जाते हैं, पर फिर प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंतज़ार से।

हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि करीबन 5 साल पहले उन्हें एक काम हुआ था, एक काम के सिलसिले में उन्हें कहीं जाना पड़ा था दफ्तर में, और किसी बड़े अधिकारी ने उन्हें 5 घंटे का इंतज़ार करवाया, लेकिन इंतज़ार किया, लेकिन आखिरकार वो काम करके ही लौटे। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जितना हंसा था उससे ज़्यादा उदास हूँ, आँखों को इंतज़ार ने सावन बना दिया है। ये हमारे गीत सुनकर इन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि जब कभी पहले बारिश होती थी जब वो छोटी थी और बाबा काफ़ी लेट आया करते थे, उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, फ़ोन भी कुछ ही घर में हुआ करते थे, तो माँ काफ़ी चिंतित हो जाती थी और भगवान के सामने बैठ जाती थी, प्रार्थना करती थी। बाबा आते थे काफ़ी लेट भीग कर, और लेकिन उनके आने के बाद से टॉवल से पहुँच कर उन्हें और ये चाय वगैरह की सेवा में लग जाती थी, तो उस तरह की एक याद है उन्हें बारिश से रिलेटेड। जी हाँ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: खुशी को सफलता का, जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश इन्होंने लिखा है कि हर किसी को हर किसी का इंतजार है। हालांकि इंतजार किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें इंतजार तो करना पड़ता है सही वक्त का। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, किसी शादी का किस्सा लिखते हैं कि दुल्हन विदा हो ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, बहुत महीनों और सालों के बाद गौना हुआ और उसके बाद उनकी विदा की गई। और ये जो इंतज़ार है, लंबा इंतज़ार, उन्हें अभी तक याद है और ये रिवाज के चलते ऐसा हुआ था। जी हाँ, रीति रिवाज तो हमें फॉलो करने ही होते हैं। हमारे एक श्रोता है जो फिलीपींस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और वो लिखते हैं कि बहुत दिनों की बारिश के बाद सूर्य देवता निकले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, हम इंतज़ार की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों का। और तो हम क्यों इंतज़ार करवाएं आपको अगले गीत का, सुनवाते हैं झट से अगला गीत।

0: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: सफर में आपके संदेशों का इंतजार है। जैसे कि मैंने कहा कि इंतजार शब्द जब आता है तो ये मोहब्बत का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है जब वो वक्त, वो लम्हे किसी के आने की इंतजार हम करते हैं, लेकिन अगर ये लम्हे और ज्यादा लंबे हो जाते हैं, घंटों महीनों के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कष्टदायी होते हैं, तकलीफ देते हैं। तो क्या आपने भी कभी किसी को इंतजार करवाया है या किसी ने आपका इंतजार किया है? ये अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और कुछ संदेश बहुत ही दिलचस्प है कि किसी को इंतजार करना करवाना कितना अलग है। जब इंतजार लंबा होता है तो यकीनन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो सीनियर सिटीज़न हैं, लेकिन अपने बचपन की याद की अगर बात करें तो समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार उन्हें हमेशा रहता था, और ये इंतज़ार बहुत ही सुख देने वाला होता था, बहुत ही आनंदित करने वाला होता था। जी हाँ, एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कोलकाता में इस वक्त हैं वो, और वहाँ पर पंडाल की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब तक बारिश होती चली जाती है तो ये जो इंतज़ार है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं उलझन भरा है। तो इंतज़ार हर एक परिस्थिति में बहुत अलग होता है, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें इंतज़ार रहता है कि आप हमारे गीत कब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो लीजिए, आपका जो कमेंट है, आपके जो संदेश है, इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

चुपके चुपके, ये था फिल्म का नाम जिसे ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एस वी वर्मा की तर्ज थी। ये गीत का संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। चुपके चुपके फिल्म का नाम एक बार फिर से आपको बता दें। आपके संदेशों से भर चुका है कमेंट बॉक्स और मैं देख रही हूँ कि किसका संदेश पढ़ा जाए, क्योंकि एक साथ ही खूब सारे संदेश आ चुके हैं यहाँ पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनका पसंदीदा गीत बज चुका है तो अब वो प्रोग्राम सुनेंगे या नहीं, लेकिन वो इस प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे थे। नहीं, हम चाहेंगे आप ज़रूर ये प्रोग्राम सुने और अंत तक सुने, बने रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में इस इबारत ने तो सावन की झड़ी ही लगा दी है और खूबसूरत से गीत सुनने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं है, देवभूमि द्वारका जामनगर और पोरबंदर जैसे तहसील में बारिश नहीं है, इंतज़ार हो रहा है। बिल्कुल इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार फल देता है, बिल्कुल फल देता है। और हम अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, अगले गीत की तरफ चलेंगे। तो कुछ बताइए कौन सा गीत है, कमेंट में इंतज़ार रहेगा।

सुलक्षणा पंडित और बप्पी लहरी की आवाज़ों में गीत चलते चलते फिल्म से अभी आपने सुना। अमित खन्ना ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस समय बनारस में धूप खिली हुई है और हम लोग आ ही गए हैं अपनी सुरीली धड़कन के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे श्रोता लिखते हैं कि प्यार में किसी का इंतजार करना इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है। इस अनुभव से रूबरू हो चुका हूं मैं। 7 साल तक उसका इंतजार करना पड़ा, लेकिन मिलने के बाद जो सुकून का अनुभव हुआ उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हम तो कैब वाले का इंतजार करते हैं, बुक करो कैंसिल कर देता है, और बहुत ज़रूरी कहीं पहुंचना पड़ता है वो इंतज़ार ज़रूर करना पड़ता है, तो हार के बस पकड़ी है। इसका भी अलग ही मज़ा है ना। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें सुरीला सफ़र का इंतज़ार रहता है, उसके बाद हेलो सहेली का भी इंतज़ार रहता है, तो विविध भारती के जितने प्रोग्राम हैं एक के बाद एक दूसरे का इंतज़ार हमें ज़रूर रहता है।

बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करना सबके वश की बात नहीं होती। कोयल पूरा साल सिर्फ बसंत ऋतु का इंतजार करती है ताकि अपने सुहाने सुरीले बोलों से वादियों में अपनी आवाज घोल सके। जी हाँ, एक और श्रोता ने लिखा है, जाना कहाँ है इस गीत के बारे में। बप्पी दा ने इस गाने में बिल्कुल अलग अंदाज में ऊंचे और रफ नोट्स का इस्तेमाल किया है जो कि बेहद आकर्षक है, और उनकी जो आवाज़ है गाने की बीट्स के साथ पूरा न्याय कर पाती है। साथ ही सुलक्षणा जी की आवाज़ भी अत्यंत मधुर लगती है, और इस गाने का जो आलाप है वो हिस्सा बहुत ही अलग ही जादू बिखेर देता है। जी हाँ, बिल्कुल हम भी इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफाक रखते हैं, और अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत स्वीकार किया मैंने फिल्म से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे भरे संदेशों का। हम मिलेंगे जल्द ही, और सुरीला सफ़र से अनुराधा को दीजिए इजाज़त।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है।

गुरुपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक आज सुनिए इस श्रृंखला की 42वीं कड़ी।

1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर वंदे मातरम का गायन किया था।

0: सन 1900 से आगे हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से ही करने की परंपरा बन गई। उस वर्ष दक्षिणारंजन सेन ने वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। आगे थोड़े ही समय में शास्त्रीय संगीत जगत के पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उनके शिष्य ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक बुआ पटवर्धन और पंडित रामकृष्ण बुआ वजे जैसे गायक अपने गायन के माध्यम से राष्ट्र सेवा की भावना से अधिवेशन में अपनी वंदे मातरम की गायन सेवा देने लगे। इसी काल में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई। धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियां बदलती गईं। कांग्रेस के हिंदू नेता धर्म निरपेक्षता का आग्रह कर रहे थे तो कुछ मुस्लिम नेता धर्म प्रेम को प्राथमिकता दे रहे थे। इसका परिणाम कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रसंग के रूप में सामने आया।
1: उन्नीस में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ था। अली बंधुओं में से मौलाना मोहम्मद अली इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहले ही दिन मंच पर कांग्रेस के सभी नेता अध्यक्ष सहित उपस्थित थे। अधिवेशन शुरू होने की घोषणा हुई। दर्शकों में से एक ऋषि तुल्य व्यक्ति मंच पर आ रहे थे। दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ रहा था। वो व्यक्ति थे भारतीय शास्त्रीय संगीत के भीष्माचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। मंच पर बैठे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सीने तक लटकती हुई दाढ़ी, सिर पर ऋषियों की तरह बंधे हुए केश, ऐसे शुभ्र वस्त्रधारी पंडित जी प्रसन्न चित्त से वंदे मातरम गाना शुरू करने ही वाले थे। तभी अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें रोकते हुए कहा, वंदे मातरम मत गाइए, मेरे धर्म में संगीत निषिद्ध माना गया है।
0: अचानक घटी इस घटना से मंच पर मौजूद कांग्रेस के प्रमुख नेता हक्के बक्के रह गए। अध्यक्ष का ऐसा कहना पंडित जी जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक का अपमान तो था ही, साथ ही खुदीराम बोस से लेकर अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से सिद्ध किए हुए तथा बंगाल के विभाजन को रद्द करवाने वाले इस राष्ट्र मंत्र का भी अपमान था। सामने खड़ा जनसमुदाय

0: स्तब्ध था। पंडित जी ने अपने ऋषि तुल्य स्वभाव के अनुसार जरा भी विचलित हुए बिना शांत फिर भी स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया,
1: माननीय अध्यक्ष महाराज, ये कांग्रेस का मंच है, किसी भी धार्मिक समुदाय का मंच नहीं है। मैं हमेशा की परंपरा के अनुसार वंदे मातरम गाऊंगा ही।
0: अध्यक्ष सभा स्थल छोड़कर चले गए। पंडित जी ने शांतिपूर्वक वंदे मातरम का गायन शुरू किया। गायन समाप्त होते ही पूरे जन समुदाय के वंदे मातरम के नारों से परिसर गूंज उठा। उसके अगले अधिवेशन में पंडित जी वंदे मातरम गाने के लिए नहीं आए। वंदे मातरम का मुस्लिम समाज द्वारा पहला सार्वजनिक विरोध इसी प्रसंग में हुआ था।
1: एक अत्यंत महान कलाकार द्वारा अपनी अस्मिता को बनाए रखते हुए अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी राष्ट्रभक्ति के दर्शन कराना, ये बिल्कुल नई बात थी। जिस काल में कलाकार राजनीति के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे या बाहरी दुनिया से अधिक अपनी कला की दुनिया में ही रमते थे, उस काल में पंडित पलुस्कर ने जो धैर्य दिखाया वो अतुलनीय कहा जाना चाहिए। 1902 में भारत में संगीत की पहली ध्वनि मुद्रिका यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्रकाशित हुई। ध्वनि मुद्रण के इस पहले दौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की तरह ही भारत के अनेक श्रेष्ठ गायकों ने रिकॉर्ड के लिए गायन नहीं किया था। इसके कई कारण थे, परंतु उन कारणों से उनके समय में रिकॉर्डिंग तकनीक का आविष्कार हो जाने पर भी उन्होंने रिकॉर्ड के लिए गायन न करने के कारण आज के शोधार्थियों के लिए, अभ्यार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए उनके गायन के बारे में लिखे गए संगीत संबंधी लेखों से, स्मृतियों से ही उनकी गायकी का उन्हें दर्शन मिलता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा किया गया वंदे मातरम का राग काफी में नोटेशन आगे उनके संगीत अध्यापन की विरासत को समर्थ रूप से आगे बढ़ाने वाले उनके शिष्य पंडित विनायक बुआ पटवर्धन ने प्रकाशित किया। पंडित विनायक बुआ की आवाज में यह दुर्लभ ध्वनि मुद्रण घोष महर्षि बापूराव दाते ने स्वयं किया था।

हाल के समय में यही संगीत रचना विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे द्वारा एक संगीत समारोह में प्रस्तुत की गई। उस समारोह का तथा आज की पीढ़ी के गायक पंडित शौनक अभिषेकी और साथियों के स्वर में ध्वनि मुद्रण प्रकाशित हुआ है। पहले सुनते हैं विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के स्वर में वंदे मातरम की झलक।

0: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जब वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था, उन्हीं दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को एक नई दिशा मिल रही थी।
1: जुलाई 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें आईं। उनमें से मद्रास विधानसभा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से ही हुई थी। मद्रास विधानसभा के अध्यक्ष सांबुमूर्ति ने दैनिक सभा कार्य की शुरुआत वंदे मातरम से ही हो ऐसा निर्णय अंग्रेजों के विरोध को दरकिनार करके लिया था।
0: इन सभी मंत्रिमंडलों की मुख्य बागडोर अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी हुई थी, फिर भी थोड़े बहुत अधिकार कांग्रेस को भी थे ही। मुस्लिम लीग के कुछ उम्मीदवार चुनकर आए, परंतु उन्हें बहुत कम सीटें मिली, इसलिए बैरिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस पर आलोचना शुरू कर दी और उसमें वंदे मातरम को भी मुख्य निशाना बनाया।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 42वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
4: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
5: मिलो जो तुम्हें बताए।
4: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
6: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
4: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।

0: implementing collaborative initiatives.
1: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
3: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति

0: डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जल मार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
1: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
2: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे जंगली फिल्म से, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार।

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एस डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गीत मधुमती फिल्म से अभी आपने सुनी। सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र ने इसे लिखा।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत बंदिनी फिल्म से अभी आपने सुना, गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री देव।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आप सभी सखियों का स्वागत है। सखियों, सावन के महीने में वो कौन सी हमारी सहेली होगी जिसे अपने मायके की या पीहर की याद नहीं आती? दोस्तों के साथ वो यूं बेहिसाब घूमना, बारिश में भीगना, फिर भुट्टे खाना और कई कई आयोजनों में नृत्य करना, मेले में जाना और बेहिसाब हंसी मजाक शरारतें। तो इन्हीं यादों को याद करते हुए और रक्षाबंधन पर भाई का इंतजार करते हुए या मायके जाते हुए हम सब सखियां जुड़ चुकी हैं एक साथ, कहां विविध भारती के स्टूडियो में, और मैं मौजूद हूं आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। आज आपकी इस सखी से बातें होंगी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नागपुर से दीपा बोल रहे हैं हम।
0: नागपुर से दीपा, वाह क्या बात है दीपा जी। क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हाँ, रक्षाबंधन आ रहा ना मैडम।
0: जी जी, तो हम ये जानना चाहते हैं दीपा जी आपसे कि रक्षाबंधन पे इस वर्ष आप क्या करने वाली हैं? आप जाने वाली हैं मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है?
1: भाई कोई बुलाया इस साल।
0: अच्छा, क्या बात है। तो उन सबकी तैयारियां होंगी घर में?
1: हाँ, ननद भी रहती है इधर ही, वो भी आएगी। अच्छा, और भाई भी आएगा।
0: अच्छा, तो ननद भी आपकी यहीं रहती है नागपुर में?
1: हाँ,
0: और आपके भाई
1: भी रहती है। भैया भी आएंगे
0: जी। तो ये बताइए कि रक्षाबंधन त्योहार से आपको क्या याद आता है? पुरानी कोई बात आपकी बचपन की, क्या चीज जो आपके चेहरे पे एक हंसी ले आती है?
1: पुरानी यादें तो बहुत है मैडम। अब जैसे शादी हो गई सभी बहनों की, तो हम मैं छोटी थी, सबसे अकेली सबको भाइयों को राखी बांधती। पांच भाई थे।
0: अच्छा।
1: भाई के लड़के, फिर भतीजे, सबको राखी मैं अकेली बांधती थी। बहुत याद आती है रक्षाबंधन पे मैडम।
0: ये बात तो सही है। तो आप अकेली ही बहन है पांच भाइयों के बीच?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, चार बहन है सबकी। सब बड़ी बड़ी शादी हो गई है सबकी, फिर छोटी थी मैं सबसे।
0: अच्छा, और उसके अलावा दीपा जी क्या करती हैं आप?
1: हाउस वाइफ है मैडम। हम
0: हाउस वाइफ है,
1: घर में ही रहते हैं। हाँ, बच्चे है, बहू है, लड़के, दुकान है अपनी मैडम।
0: अच्छा जी, किस चीज की?
1: ये पान शॉप की है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें भी सारा दिन इसकी भी बड़ी तैयारी करनी होती होगी घर में, है ना?
1: दुकान में ही करते हैं सब, हम घर में नहीं करते कुछ।
0: अच्छा, तो आप घर का सारा काम संभालती हैं। आज ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तिरंगा पिक्चर का मैडम सुना दीजिए, इसे समझो नरेशम का तार भैया।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: वैशाली भाटी से।
0: वैशाली भाटी। तो वैशाली जी, बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हम इंदौर से।
0: इंदौर से। अरे वाह, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं, कैसा चलता है आपका दिन? और इन दिनों तो त्योहारों का मौसम है ना, इंदौर में तो त्योहार सारे खूब अच्छे से मनाए जाते हैं।
1: हाँ, बहुत बढ़िया है।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: हमारा तो ऐसा कहीं नहीं, अभी हमारी नई नई शादी हुई है।
0: अच्छा, अरे वाह, तो ये तो बहुत सारी बातें बताने की हो गई हैं। तो कैसा लग रहा है नए परिवार में आके, इस नए परिवेश में आके?
1: बढ़िया लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है। तो इंदौर से पहले आपका मायका कहाँ था फिर? कहाँ से शादी हुई?
1: अपन महाराष्ट्र से जलगांव।
0: जलगांव से आप इंदौर आ गई हैं, तो ये इंदौर नया शहर है आपके लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब कुछ रोड्स और गलियों के बारे में कुछ अता पता चला होगा, है ना?
1: हाँ, बहुत सारा बढ़िया लगता है।
0: और ससुराल में कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर?
1: मेरे साथ मेरे सास ससुर और मेरे पति और मैं।
0: अच्छा, पहली राखी आई है शादी के बाद या ये दूसरी वाली आई आपकी?
1: पहली आएगी, पहली
0: पहली
1: आएगी।
0: आएगी। तो रक्षाबंधन के बारे में बताइए, क्या आप इस बार जाने वाली हैं जलगांव या यहीं रहेंगी, कैसा क्या होने वाला है?
1: नहीं, अपने यहाँ कान्हा जी आने वाले हैं ना।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसलिए अभी जाना बंद है।
0: तो जाना बंद है तो।
1: अभी छोटा सा बेबी आएगा ना।
0: ओ, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: एक हमारे कान्हा जी बाबू आ रहा है, उसके लिए कोई गाना सुना दो। अच्छा,
0: तो चलिए सुनते हैं।
2: मेरा

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: माया जाधव।
0: माया जी, कहाँ से बात कर
1: हाँ,
0: रही हैं?
1: नासिक।
0: नासिक से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बचपन से कार्यक्रम सुनती हूँ विविध भारती से। मैं बहुत ही बड़े फैन हूँ।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आप सभी सहेलियों के फैन हैं, क्योंकि आपकी
1: हाँ
0: कॉल का हम लोग हमेशा हर मंगलवार को इंतजार करते हैं,
1: हाँ
0: है ना? तो कौन सा गीत सुनना चाहती हैं
1: मैं
0: आप, बताइए।
1: पारस मणि फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आज का हुआ रानी चेहरा।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं कॉल का इंतजार करते हुए। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: नीता महाजन, भवानी सागर देवास से।
0: जी देवास से बात कर रही हैं आप, भवानी सागर से। तो अपने बारे में कुछ बताइए नीता जी। राखी का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं घर पर?
1: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो थोड़ी बहुत घर में साफ सफाई करेंगे, मिठाई वगैरह बनाएंगे।
0: अरे वाह, तो क्या मिठाई बनाने वाली हैं आप?
1: चक्की बना सकती हूँ मैं बेसन की।
0: हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है उस तरफ की और बड़ी स्वादिष्ट ये
1: हाँ
0: मिठाई होती है ना
1: हाँ
0: जी। तो घर में और कौन कौन है, अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: तो मेरी 3 बेटियां हैं तो 2 की शादी कर चुकी हूँ मैं और एक पढ़ाई कर रही है अभी।
0: जी, तो 2 बेटियों की
1: हाँ
0: शादी हो गई है, तो वो आने वाली हैं मायके?
1: हाँ मायके आएगी ना, दोनों बेटियां आएगी।
0: जी, और छोटी
1: हाँ
0: बेटी किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं?
1: वो BCom कर रही है।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तो आपको इंतजार होगा अपनी दोनों बेटियों के आने का।
1: हाँ वही इंतजार चल रहा है ना।
0: तो मन खुश रहता होगा इन दिनों।
1: हाँ मन खुश रहता है ना।
0: और आज आप
1: हाँ
0: ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नदिया के पार का, कौन दिशा में चला रहे।
0: तो चलिए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, कौन दिशा में लेके चला रे बटुए।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से। हाँ
0: उज्जैन से रेखा वर्मा। क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आने वाला है, घर में बहुत सारी
1: बिल्कुल,
0: तैयारियां होती हैं।
1: रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है मैम। आगे हम राखी वगैरह लेके आ गए हैं मार्केट से, क्योंकि फिर उज्जैन में काफी भीड़ है यहाँ पर।
0: इस बार तो कई तरह तरह की राखियां हैं बाजार में,
1: हाँ
0: हमने भी
1: बहुत
0: देखी।
1: सुंदर सुंदर राखियाँ हैं मैम, और हम फर्स्ट में ही जाके ले आए हैं ताकि और अच्छी मिल जाए हमको।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा पहले ही ले आई ताकि बाद में ना भीड़
1: जी
0: मिले और राखियों का चुनाव भी खूब अच्छे से आप कर
1: खूब अच्छे
0: सके।
1: से कर सकते हैं अपन।
0: हाँ, ये बात तो सही है। जीवन में क्या चल रहा है, क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ,
0: अच्छा,
1: बस मतलब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। और पार्लर चलाती हूँ, घर में ही चलाती हूँ बस।
0: बहुत सुंदर बात है ये तो। और रक्षाबंधन से आपके कोई यादें जुड़ी हों, बचपन की कोई बात, या इस दफा आप क्या करने वाली हैं, जाने वाली हैं मायके या भाई आएंगे, क्या है
1: नहीं
0: वो
1: नहीं
0: बताइए।
1: मैम, जाऊंगी मैं। क्या है कि एक ही बहन हूँ 6 भाइयों के बीच में, तो
0: अरे वाह, तो घर में तो सब
1: इसलिए
0: आपको बहुत भाग्यशाली कहते होंगे, है ना?
1: जी मैम।
0: ऐसा हो जाता है जहाँ पे भाई हो अधिक और बहन एक हो, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।
1: जी मैम,
0: तो कहाँ है आपका मायका?
1: मेरा मायका मैम ब्यावरा पचोर
0: अच्छा,
1: राजगढ़ जिले में है।
0: तो आप मिठाई मेवे सब कुछ लेकर जाएंगी?
1: बिल्कुल मैम,
0: जी।
1: बहुत इंतजार रहता है, भतीजी उनको भी, भतीजे उनको भी, मेरा वो आने वाली है मैम। कितनी भी उम्र हो जाए, मायके में जाने के बाद व्यक्ति वापस वैसा के वैसा, ऐसा लगता है जैसे अपन बचपन में आ गए वापस।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: मेरी मम्मी नहीं है, भाभियां हैं, लेकिन मेरी भाभियां ऐसी हैं मैम कि अभी तक राखी करने वो नहीं जाती है, क्योंकि मैं जाती हूँ ना यहाँ से। तो
0: यानी कि भाभी ने माँ का रूप ले
1: जी
0: लिया
1: मैम,
0: है ना?
1: वो
0: तो
1: इंतजार करती है दीदी आ जाएंगी, उसके बाद में फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि कोई की एक बहन है, कोई दो बहनें हैं, तीन बहनें हैं, तो वो इंतजार करती है कि हमारी तो एक ही है।
0: ये बात तो कितनी अच्छी बात है ना, घर में की सारी भाभियाँ आपका इंतजार करती
1: मेरा
0: हैं
1: इंतजार करती है मैम, एक भी नहीं जाती है।
0: कि कब रेखा दीदी आएंगी और इस घर में फिर से वही ऊर्जा और हंसी मजाक और एक प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा, है ना?
1: तो सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आज वो माँ की जगह मतलब बैठी है मेरे लिए, इंतजार
0: जी,
1: करती है, तो मुझे उसकी खुशी और बहुत ज्यादा होती है।
0: तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम आपका हमेशा इसी तरह बना रहे और हर घर में ये भाभी और ननद का प्रेम इसी तरह बने जैसा रेखा वर्मा के घर में। तो रेखा जी,
1: जी,
0: बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मजबूर पिक्चर का सुनना है। देख सकता हूँ मैं तुझे कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
0: तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में वक्त हो चला है एक अंतराल का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी दीदी मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से रंजीता जी बोल रहे हैं। कैसी हैं आप
1: जी जी दीदी मैं ठीक हूँ।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन बस बिल्कुल नजदीक ही आने वाला है ना?
1: मार्केट में शोर है, रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार आने वाला है। सभी लोग मतलब अपने भाई को राखी बहन पहनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और त्योहार का मतलब बड़े ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, अभी तो बाजारों में हर दुकानों पे रक्षाबंधन की राखियां ही आपको दिखाई देंगी, है ना?
1: जी
0: तो आप खरीद लाएं या आप जाने वाली हैं अपने मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस बार?
1: नहीं दीदी मैं जाती हूँ अपने मायके अपने भाई को राखी पहनाने के लिए।
0: अच्छा, तो वो तो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि कब आएंगी।
1: जी।
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता ना कि आप कहेंगी कि नहीं समय कम है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आऊंगी, और फिर मायके से सब लोग जिद करते, नहीं तुम अब के आओ तो 3-4 दिन ज्यादा रुकना।
1: जी, ऐसे होता ही है। लेकिन क्या है, हम सभी लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं, तो जैसे कि मैं अपने भाई को राखी पहनाने जाती हूँ, वैसी मेरी भी भाभी है, वो भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाते हैं, तो सभी का सोच के जाना पड़ता है दीदी। तो मैं हमेशा एक दिन पहले राखी पहनाने जाती हूँ, फिर उसी दिन हम लोग रक्षाबंधन के दिन राखी पहना के हम लोग वापस होते हैं। तो मेरे मिस्टर हैं, उनको भी उनकी बहनें राखी पहनाने आती है और मेरी भाभी भी अपने भाई को राखी पहनाने जाती है।
0: तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना, आप हर तरह का देखिए रिश्तों में कितना सुंदर संतुलन बना के रखती हैं कि
1: जी
0: आपके घर में भी हो जाए, आपके मायके में भी आप अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: फिर यहाँ पर भी ध्यान रखती हैं कि आपके पति को,
1: जी
0: उनकी भी तो बहनें हैं ना,
1: जी
0: वो लोग आए राखी
1: जी
0: बांधने के लिए।
1: जी फिल्म
0: तो बताइए रंजीता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: का नाम है जीवन मृत्यु और गाने की बोल है झिल्मिल सितारों का आंगन होगा।
0: तो रंजीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? अपना नाम बताइए।
1: जी, आपकी बात इशिका वर्मा से हो रही है
0: कहाँ से बात कर रही हैं ईशिका आप?
1: जी? उज्जैन से। हाँ,
0: क्या बात है, ये बताइए, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है छोटी सी नन्ही सी गुड़िया हैं आप।
1: यस मैम, मेरी एज ज्यादा नहीं है, 24 ही है। हाँ
0: अच्छा, क्या बात है। तो
1: जी
0: ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो युवा वर्ग है हमारे देश का, विविध भारती सुनती है
1: यस
0: ना?
1: मैम। मैम यहाँ पर सभी सुनते हैं, मतलब हमारे जो पापा, मेरे फादर इन लोग, वो मतलब ऑलमोस्ट ही रेडियो में, मतलब कॉल्स करना और हम सबको भी रेडियो सुनाना उन्हीं ने सिखाया है।
0: क्या बात है। तो आपने बोला फादर इन लॉ, तो आप विवाहित हैं?
1: यस मैम, इसी ईयर मेरी शादी हुई है।
0: इसी साल?
1: यस मैम, फैमिली
0: अच्छा, अरे वाह,
1: अच्छी है मैम, बिल्कुल। हाँ
0: अरे वाह, बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है। तो आपके इस नए विवाहित जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं ईशिका। और
1: थैंक
0: बताइए,
1: यू मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम आज मैं अंधा कानून का मेरी बहना दीवानी है सॉन्ग।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपके लिए, आपकी ही पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली जी
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, नमस्ते। पहले तो आपको, हाँ
0: नमस्ते।
1: जी, मैं प्रमिला महेश बोल रही हूँ मैम, गुजरात के साबरमती से। जी
0: साबरमती से प्रमिला महेश
1: बिल्कुल
0: जी, तो बताइए प्रमिला जी, कैसी हैं आप
1: अच्छे हैं मैम, आप सुनाइए। हाँ
0: जी? यहाँ पर भी सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं
1: जी,
0: जी। तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम।
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात
1: हाँ
0: की ये
1: जी
0: कला बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा बारीक
1: जी
0: काम है।
1: हाँ जी मैम जी मैम, ये घर के पास ही एक कारखाना है, तो वो गृह उद्योग है महिलाओं के लिए, तो वो अपने को घर पे लाने के लिए देते हैं वो ऐसा काम। हाँ
0: अच्छा, तो मतलब
1: जी
0: आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करती हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, मतलब खाना ना खा के जब हम फ्री होते हैं 3 बजे, तो सखी सहेली जैसे ही चालू होता है हमारा काम भी चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, तो सखी
1: जी
0: सहेली
1: जी
0: और
1: मैम
0: आपका तोरण बनाने का साथ, ये हमेशा
1: बिल्कुल
0: साथ रहता है।
1: बिल्कुल, एक दिन भी मिस नहीं होता है आपका सखी सहेली हेलो फरमाई से। जी
0: प्रमिला जी, तो यही तो आप जैसे जो श्रोतागण हैं, वही
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: सुंदर हमारे सितारे हैं विविध भारती के, है ना? और ये बताइए, रक्षाबंधन आने वाला है,
1: हाँ जी मैम,
0: तो क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी?
1: तो तैयारी तो ये है मैम कि मायका तो दूर है, अभी हमारा इंदौर में है, तो देखेंगे, अभी जाना होगा तो जाएंगे, वैसे ऐसे कुछ सोचा नहीं है। दो भाई थे मेरे, दोनों ऑफ हो गए, एक बड़े भैया हैं अभी, वही हैं फैमिली में, भैया भाभी उनके बच्चे हैं, तो जाते हैं कभी
0: तो
1: ऐसे। एक दीदी मेरी पास में ही है इंदौर में, तो वो अटेंड कर लेती है प्रोग्राम को।
0: जी
1: जब मेरे भैया दोनों गुजरे थे, हम दोनों की ही मट्टी में, तो मतलब मैं दूर होने की वजह से नहीं मिल पाई मैं उनसे,
0: जी
1: यही दुख
0: जी
1: लगता है ज्यादा। जी
0: जी कष्ट जीवन में आते हैं प्रमिला जी, फिर ईश्वर हमें उसका साथ,
1: हाँ
0: उसका
1: जी
0: सामना
1: मैम,
0: करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना
1: शक्ति मिलती है मैम, अभी
0: जी?
1: थोड़ा क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, अब ऐसा हो गया है तो।
0: हाँ,
1: एक
0: हम
1: भैया है उनसे भी हम
0: जी,
1: अच्छे रहते
0: हम
1: हैं, खुश रहते
0: जी
1: हैं, माँ बाप का प्यार उनसे ही मिल जाता है मैम हमको।
0: बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन के हम भी भाव विभोर यहाँ हो रहे हैं, आपके दुख को और आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं, वो ही
1: जी जी
0: अब आपका ध्यान भी रखते होंगे, आपसे बात भी करते
1: मैम
0: होंगे,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल,
0: ना
1: ध्यान रखते हैं,
0: जी?
1: बुलाते हैं हमेशा, कॉल करते हैं, फिर त्योहार पे कोई प्रोग्राम होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो फोन करके, बकायदा हमको न्योता मिलता है आने
0: ये बात तो
1: का
0: है।
1: और जाना
0: तो
1: भी पड़ता है मैम
0: और
1: फिर।
0: आजकल तो क्या डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, तो वीडियो कॉल से भी
1: हाँ जी
0: बात कर सकते हैं, वहाँ से एक छोटी सी ही सही लेकिन मुलाकात तो हो जाती
1: जी
0: है ना?
1: मैम, मिलती है तो नहीं, जैसे कभी जाना होता है तो 10 दिन 15 दिन तो मेरा तो फिक्स है, मतलब दूर से जाती हूँ तो मतलब वो फिर मुझे आने भी नहीं देते हैं,
0: सही
1: ऐसा है।
0: बात
1: हाँ
0: है जी, हाँ,
1: जी
0: क्योंकि बार बार वहाँ जाना संभव नहीं
1: हाँ
0: हो
1: जी
0: पाता जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी। आज बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप
1: जी मैम, मेरे को काजल मूवी का सुनना है, देखो छम छम घुंघरू बोले।
0: जी? तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मीना मारू बोल रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से मीना मारू जी, क्या बात है।
1: जी
0: तो कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक शॉप है मेरी पिपली बाजार में,
0: जी,
1: लेडीज वेयर की शॉप संभालती हूँ,
0: क्या बात है। तो
1: और मैंने अपने शॉप पे भी रेडियो रख रखा है, विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनती
0: ये
1: हूँ।
0: तो बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि काम भी करते हैं और आप अपना मनोरंजन भी करती हैं। और
1: हाँ
0: मन
1: जी
0: सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विविध भारती पे तो सारी देश विदेश की जानकारियां मिलती हैं हमें, है ना।
1: हाँ जी।
0: तो घर परिवार में कौन कौन है बताइए।
1: घर परिवार में मेरी एक बेटी है नयन,
0: जी।
1: और एक बेटा है प्रियम मारू, हस्बैंड है, बेटी की शादी हो चुकी है,
0: क्या बात
1: उसकी
0: है।
1: बेटी है, हाँ जी उसकी बेटी है अलिश्का, 8 साल की। बिल्कुल
0: आज हम बात कर रहे हैं मीना जी, अब रक्षाबंधन, तो आपकी क्या यादें हैं रक्षाबंधन को लेके, आप इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रक्षाबंधन की यादें मेरी तो बहुत अच्छी यादें रही हैं। मेरे दो भाई हैं, मतलब एक भाई 4 साल पहले शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदायी याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्यौहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्यौहार हुआ करता था।
0: जी।
1: मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ में हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते थे,
0: जी।
1: और मुझे मिठाइयों का भी बहुत शौक है, तो मैं रक्षाबंधन पे हमेशा घर से ही मिठाई बना के ले जाती थी।
0: क्या बात है। तो आप सारी मिठाइयाँ आप
1: हाँ जी
0: बनाती हैं।
1: हाँ जी हाँ जी, मैं घेवर, स्पेशली मेरे घेवर बहुत फेमस है मेरे मायके में, सबको
0: अरे
1: मेरे
0: वाह।
1: हाथ के घेवर बहुत पसंद आते हैं। करीब 35 साल से बनाती आ रही हूँ मैं, तो
0: जी
1: हमारा त्यौहार राखी का त्यौहार तो बहुत अच्छे से मनता था, पर बस कुछ 4-1 साल से मेरा बड़ा ब्रदर मनोज जांगी करके था, उसकी सडनली डेथ हो चुकी है, तो वो त्यौहार
0: ओहो।
1: अभी आज के लिए मेरे लिए बहुत दुखदाई रहता है। असल में अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा गला रुंध गया है,
0: जी, वो महसूस
1: मुझे
0: कर
1: अपने
0: पा
1: भाई की
0: रहे हैं
1: बहुत
0: हम।
1: याद आती है। हाँ
0: जी,
1: जी
0: लेकिन मीना जी, यही
1: वैसे
0: है,
1: भी,
0: जो हमारे प्रिय हैं वो अगर हमसे दूर चले भी जाते हैं ना, तो उनका
1: हाँ
0: प्यार
1: जी
0: एक शक्ति बन के हमारे साथ रहता
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: आप
0: अच्छी
1: बात सही
0: यादों
1: कर,
0: को
1: बिल्कुल
0: आप
1: सही।
0: संजो के रखिए, उनके साथ
1: हाँ
0: बिताए, जो
1: जी
0: हंसी मजाक वाले, जो अच्छे पल हैं उनको अपने मन में बसाए रखिए, क्योंकि राखी वाले दिन किसी न किसी तरीके से वो भाई आप तक अपना प्रेम तो
1: बिल्कुल,
0: पहुंचा ही देंगे,
1: हाँ,
0: है
1: हो
0: ना।
1: पाए बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल।
1: बिल्कुल।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: बेईमान फिल्म का गाना है, लता जी और मुकेश की आवाज में। गाने के बोल है, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे
0: आहा
1: चंदा और किरण का, जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा। ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से सुरीले तरीके से आपने ये गाने को सुनाया है, तो चलिए
1: ये
0: सुनते हैं उसी गीत को।
2: राखी।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं निगाह जान बोल रही, इंडिया जम्मू कश्मीर से। जी
0: क्या बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कॉल आई है निगहत जान की।
1: जी
0: जी,
1: हाँ,
0: तो कैसी हैं आप और कैसा है कश्मीर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्मीर भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी तेजी हो रही है। अभी गर्मी चल रही है क्योंकि सितंबर जो महीना है वो उसमें भी गर्मी होगी थोड़ी, फिर अक्टूबर से यहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है।
0: जी, और उसके बाद तो फिर
1: जी
0: सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हो जाते हैं, है ना?
1: तो हाँ, वो तो ज्यादातर यहाँ बर्फ जो गिरती है वो दिसंबर में महीने में गिरती है।
0: जी
1: खास
0: जी
1: करके मैं श्रीनगर में रहती हूँ,
0: जी
1: टूरिस्टों का तो आना यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि यार डल लेक है, वहाँ भी नाव शिकारी का सवारी करते हैं और
0: जी
1: टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं।
0: जी कुछ बीच में बच्चों की छुट्टियां भी लग जाती है ना, तब भी
1: हाँ
0: कश्मीर सबसे पहले सभी, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लिस्ट में यही रहता होगा कि कश्मीर घूमने तो जरूर जाएंगे, है ना?
1: हाँ क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम है जन्नत।
0: जी बिल्कुल, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जन्नत में रहती हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए निखत जान
1: जी,
0: आप।
1: मैं घर में होती हूँ, मैं घर संभालती हूँ। अब तो मेरे शादी है, 12 दिन रह गए मेरी शादी को,
0: कब?
1: 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरी शादी है।
0: अरे वाह, आपका ब्याह होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मेरी बहन भी इसके नाम में को सुनना चाहती है, उसका नाम है कुमसर जान।
0: जी, उन्हें भी हमारा नमस्कार कहिए।
1: हाँ, चलते चलते मैंने सोचा अब मुझे किसी और के घर जाना है, तो सोचा सहलो सहल में एक बार फिर से कॉल करूं, तो खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा कॉल लग गया आज और मैं बहुत खुश हूँ। जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा कॉल लग ही
0: तो
1: जाता।
0: ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है सावन, गाने के बोला है तुझे याद किया मेरे दिल ने, कब आओगे साजन मुझसे मिलने।
0: वो
1: अब
0: तो
1: तो
0: बस
1: साजन का ही
0: आ ही रहे
1: इंतजार
0: हैं, सितंबर में बस आने ही वाले हैं, है ना? तो
1: हाँ
0: अब ये
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इंतजार का जो वक्त है
1: खत्म हो गया
0: बिल्कुल खत्म होने को ही है, तो चलिए सुनते
1: बिल्कुल।
0: हैं इस गीत को।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हम सहेलियों से अनुरोध करते हैं कि जिनके कॉल्स आज लग पाए हैं वे अगले 2 महीनों के बाद हमें संपर्क कीजिए ताकि बाकी सखियों को भी बातचीत का अवसर मिल सके। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए हैं वे सहेलियां निराश ना हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं हिंदी में 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में नंबर है 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। आज की हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: दोस्तों नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का।
2: चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही दो दिन के लिए आ जाओ पर आपका आना जरूरी है। अचानक? अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट के टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हों, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं? क्योंकि पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना

बंद हो गया था। बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन पेपर पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला, पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी चिंतित हो

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थीं। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया, गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है, एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था, क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे। पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके

सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहाँ से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहाँ गए, वहाँ से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो, पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के 1 माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहाँ तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले, हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

कहाँ तक पहुंची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी, ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं। घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है। माता पिता को भी चिंता लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है? हाँ वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है, बाढ़ ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश पर भला किसका वश चलता है, ड्राइवर बोला। अब तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था, धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह, कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम, हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिए। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं, उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं।

हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन 2-3 महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई, जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है। और चाचा, चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD। कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था, तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़। चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे, 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद। यानी हर एक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं, समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है। ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहां तेज बारिश होगी वहां रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा, चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूं, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूं, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ, ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाएं क्या, बहन ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें, थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहाँ तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी ही क्यों। हाँ, फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाएं, गाड़ी घेर लें, वो बात अलग है, जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

0: सुना दे।
1: घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई। क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था। टेबल लैंप जल रही थी। साइड की रैक में किताबें रखी थी। चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा आप ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था, उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं। दौड़ना, घूमना, व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाचे से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है। जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं, पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके सामने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास, चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं, पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा? मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन वो यहाँ

स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है, उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी, पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं, ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई। कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था। कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था, दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे। दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है। चाचा ने चश्मा उतारा, अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे? किस तरह की बात? आपकी तबीयत को लेकर। अरे नहीं नहीं, मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा, अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ। एक न एक दिन तो सभी को अपने अंतिम सफर पर जाना ही पड़ता है। नाश्ता करते हैं, उसने बात बदलते हुए कहा। वो अंतिम सफर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था, वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? फिर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहां 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहां केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं, देखेंगे बाद में कुछ और लगवा देंगे। यहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी, चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है, हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूँ। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा, मैं चाहता हूँ कि वहाँ खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो, बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहाँ की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा, मैं जानता हूँ तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम ही अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था, और कितने सालों तक हमारे साथ रहा, याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एकटक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?

चाचा, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका काम देख लिया करूंगी, पर प्लीज वसीयत असीयत का ख्याल छोड़ दीजिए चाचा, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी ने चाचा का हाथ थाम कर कहा, चाचा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे सुख भी मिलेगा। वो भावुक होठी, मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ बेटा। अपनी विरासत किसी गुणी को, समझदार को और उसके प्रति लगाव रखने वाले को सौंपूंगा तो वो सुरक्षित रहेगी। मुझे मालूम है तुम्हें ये सारे काम आते हैं, तुम वहाँ की मिट्टी में पली बढ़ी हो, लोगों को जानती हो। मुझे विश्वास है कि तुम वहां की सारी चीजों को संभाल लोगी बेटा। सुनीता, सुनीता जरा मेरी अलमारी में से वो फाइलें ले आना, चाचा ने चाची से कहा। मीनाक्षी चाची को लेकर अचरज में डूबी थी। क्या चाची को कोई एतराज नहीं है? महिलाएं तो अपनी एक चीज तक नहीं देती और चाची एक शब्द नहीं बोल रही हैं। फिर उसे लगा कि चाची बोलेंगी भी कैसे। चाचा ने परिवार का माहौल ही ऐसा बनाकर रखा कि अपने पराये में कोई भेद नहीं। अपने बड़े भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी। भाभी को हमेशा सम्मान दिया, दूसरे भाई को भी उनका हिस्सा और मकान दे दिया है। सारा परिवार हर त्योहार पर एक साथ मिलता जुलता है। बेटा मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक एक बात समझा दूंगा, चाचा उसे आश्वस्त कर रहे थे। चाचा आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए, चलिए लेट जाइए, आराम करिए। मीनाक्षी अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी। डायलिसिस के लिए जाना है, याद है ना, चाची ने टोकते हुए कहा। देखो मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी चाची तो मेरी बात पर नाराज होने लगती है, पर तुम मजबूत दिल की लड़की हो, मेरी एकमात्र आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देना बेटा। हाँ बताइए ना चाचा, बोलिए। मेरा अंतिम संस्कार गांव में ही करवाना। चाचा आप बेकार की बातें करते हैं, तभी तो चाची नाराज होती हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा, जीवन मृत्यु ये तो शाश्वत है।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोंछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी, तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है, आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सब से मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुंचा सकूं। चाचा पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगी तुम ही कर पाओगी, कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है, उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से, खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेकी।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1 to 3 minute का वीडियो बनाओ और शो केस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31st अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।

0: के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे आधार जैसा ना कोई,
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाले युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों से मिलकर उन्हें खुशी हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा

0: खरीदने के एक समझौता किया है। ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और अनुकूल डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। उधर जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि यह विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। श्री नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के निर्देश दिए। महान अभिनेत्री सौकार जानकी का चेन्नई में निधन हो गया है। सौकार जानकी ने दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत में लगभग 400 फिल्मों में अभिनय किया। भारतीय महिला टीम आज एम्सफल्टन में FIH हॉकी विश्व के दूसरे चरण में मेजबान नीदरलैंड के साथ खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: पेश है फिल्म संगीत और पहला गीत सोनू निगम की आवाज में, फिल्म का नाम है साथिया।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत कुमार सानू और केएस चित्रा की आवाजों में। फिल्म का नाम था विरासत। आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अगला गीत है शाहिद माल्या की आवाज में। फिल्म का नाम है मौसम।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

हेलो नमस्ते आदाब मेरे दोस्तों, मैं हूँ आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। सिगरेट के धुएं, सिगरेट स्मोक ने मानव जाति के लिए कभी भी अच्छा नहीं किया है। इसने लोगों की आशंका और जीवन शैली को सिर्फ अपमानित कर दिया है। लंबे समय से ये एक प्रवृत्ति यानी ट्रेंड के रूप में प्रयोग किया जाता था। तंबाकू, टुबैको से भरे पेपर के एक कटे हुए टुकड़ों को पकड़ना और समाप्त होने के बाद और धुएं को अनकंडीशन मैनर से उड़ा दिया जाता था। एक व्यक्ति को एहसास नहीं हुआ कि प्रभाव इफेक्ट के बाद यह कितना बुरा है। तंबाकू की पत्तियों में मौजूद रसायन जो मस्तिष्क को एक उत्साहित स्थिति में बदल सकती है। निकोटीन जब सिगरेट के माध्यम से श्वास लेता है, फेफड़े के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और मस्तिष्क के दाहिनी ओर जाता है ताकि इन्हें 10 सेकंड के इनहेलेशन के भीतर दिखाई जाता है। लेकिन जल्द ही आपको एहसास हो जाए कि वापस विथड्रॉल के लक्षण उत्पन्न होने पर आप वास्तव में निकोटीन के आदि हो जाते हैं। और एक बार जब आपका शरीर धूम्रपान यानी स्मोकिंग के दूसरे शॉट के लिए लालच शुरू कर देता है तो आपके लिए रुकने में बहुत देर हो जाती है। असतन धुएं के खतरे के कारण हर साल लगभग 10 लाख लोग मर जाते हैं और भारत दुनिया के धूम्रपान करने वाले में से लगभग 12% है। सही समय पर उचित उपाय नहीं किए जाने पर यह संख्या प्रत्येक गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है और इसके बारे में लोगों को चेतावनी निश्चित रूप में एक बड़ा कदम है। इसके कई कारण है दोस्तों। स्मोकिंग एडिक्शन के धूम्रपान व्यसना यानी स्मोकिंग एडिक्शन के लिए एकमात्र कारण तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। जब यह सिगरेट स्मोक किया जाता है तो ये रसायन यानी ये केमिकल ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से एड्रेनल की रश का कारण बनता है। हमारे दिमाग में पाए जाने वाले हैप्पी हॉर्मोन्स जिसे डोपामिन कहा जाता है, ये निकोटीन के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इस समय एक और स्तर तक पहुंचाते हैं। बस कुछ क्षणों के मजे के लिए यह बेहतर है कि आप अपने पूरे जीवन को जोखिम न दे। धूम्रपान की लत यानी स्मोकिंग एडिक्शन के लक्षण क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा इस लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। धूम्रपान की लत के लक्षण ढूंढना काफी आसान है। यदि आप चेन स्मोकर हैं, यदि आपने सामाजिक जीवन से खुद को दूर किया है, अगर सिगरेट छोड़ने के आपके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, आदत से छुटकारा पाने में कभी देर नहीं होती, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इसका आदि न हो। एडिक्शन ने कभी भी अच्छा नहीं किया है, ना तो ये कभी भी होगा। इस लत से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपचार अपने सभी आदि मित्रों से दूर रहना है। दैट मीन्स यू हैव टू अवॉइड ऑल द पीपल हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस और सिगरेट एडिक्ट्स। इसके अलावा उन्हें अपने बुरे प्रभाव से अवगत कराएं। तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से परामर्श करें। एक स्वस्थ जीवन शैली है, अच्छा खाओ और लंबे समय तक अच्छी आराम नींद ले। समय परमिट होने पर अपने प्रियजनों के बारे में सोचें। स्मोकिंग की लत के लिए कुछ अन्य उपचार विकल्पों में हिप्नोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम आदि है। निकोटीन की लत के लिए उपचार तरीकों के संयोजन में काम करता है। तो एक के लिए क्या काम कर सकता है जो दूसरे काम नहीं करेंगे। स्मोकिंग एडिक्शन से बचने के लिए प्रिवेंशन इलाज से बेहतर है, यह आज तक सच है। जब आप जानते हैं कि आप किसके साथ खत्म होने जा रहे हैं, तो इसका आदि क्यों हो। आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल रखना हमेशा बेहतर होता है। इस प्रकार की लत के बाद के प्रभाव, आफ्टर इफेक्ट,

बहुत डेंजरस होते हैं। फेफड़ों के कैंसर, बैड ब्रेथ और अन्य पुराने विकारें। स्मोकिंग करने की लत के बारे में लोगों को जागरूक करने की ओर रुख करें। लोगों को निकोटिन युक्त उत्पादों का उपयोग करने से रोकें। साथ ही पब्लिक प्लेसेस में निकोटिन के सख्त उपयोगी की दिशा में कुछ मानक नियम यानी नीतियां लागू की जा सकती है। स्कूल और कॉलेज के पास निकोटिन के संबंध में विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से धूम्रपान की लत फैलने से रोकने के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। धूम्रपान की लत यानी स्मोकिंग एडिक्शन के निकासे विथड्रॉल के बहुत सारे लक्षण होते हैं। यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या आप निकोटिन के आदि हैं, इसका उपयोग करना बंद करना है। स्मोकिंग से संबंधित विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शारीरिक निकासी यानी फिजिकल विथड्रॉल सिम्टम्स के लक्षण हैं। इसमें चिंता, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, हेडेक्स, टेंशन के कुछ मामूली मामले हैं। यदि आप स्मोकिंग करने वाले हैं और एक ही चरण में जा रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा प्रोफ्यूस स्वेटिंग, पैनिक अटैक्स, दिल की धड़कन में वृद्धि, ट्रेमर्स, सांस लेने में कठिनाइयां और उल्टी छोड़ने के बाद के प्रभाव से संबंधित हो सकती है। लेकिन ये ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ये बहुत देर हो चुकी नहीं है। अपने प्रियजनों के साथ एक खुश भविष्य के लिए आज एक कदम उठाए, सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दे। With this wonderful message, this is Chetan signing off. Till we meet again in our next program, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। पेश अगला स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गाँव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
3: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए
2: जी।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने

0: लिए अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग
1: जी।
0: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
1: बिल्कुल।
0: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
1: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं। ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
0: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ ना कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
1: तो करते हैं शुरुआत कहानी की
0: जी।
1: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
0: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया
1: जी।
0: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
1: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
0: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है
1: जी।
0: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
1: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
0: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
1: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ? क्या बाज कभी उड़ पाया?
0: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा
1: जी।
0: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी
1: जी।
0: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था
1: जी।
0: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
1: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओ, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
0: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते
1: जी।
0: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो
1: जी,
0: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
1: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
0: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
1: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
0: और श्रोताओ, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं, शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
1: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
0: तो हम कहना चाहते हैं,
1: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
0: आप हैं।
1: बिल्कुल।
0: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार

0: भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
1: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है। इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
0: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: नमस्कार, नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
4: बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
5: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
6: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
1: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
6: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक
1: है। बताओ।
6: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
5: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
6: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।

0: अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
1: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
0: अरे वाह,
2: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना, बोलो।
1: हाँ।
2: जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
1: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
2: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: तो,
2: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चों, अब तुम्हारी बारी है।
1: जीवन सुखद बनाएंगे,
2: जीवन सुखद बनाएंगे, हाँ जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे।

0: एक तरफ तमाशा है हसरत की तबीयत क्या क्या बात।
1: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
0: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
2: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
0: मोहानी साहब, आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
3: जी नहीं नहीं नहीं, नहीं।
2: मोहानी साहब, ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
3: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए।
2: हाँ? नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
0: क्या
2: जी? एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
3: अरे मान साहब, शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब। चंद अशार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाएं।
0: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो दें।
3: नहीं नहीं, माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
2: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
3: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
0: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
1: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया।
0: आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
3: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
0: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
3: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, शब्बा खैर।
3: शब्बा खैर।
4: बला की ठंड है,
3: लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है।
4: नहीं नहीं
3: नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है।
4: तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए।
3: अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
1: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
3: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का। बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगाम हयात जाविदां था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
1: अंग्रेज हुकूमत को

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये

0: योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य। आज ही अपनाएं BSNL।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी पर राजनीतिक हताशा और मीडिया में सुर्खियां बटोरने की लालसा का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित जैन एच युवा उद्यमी चौपाल में युवा उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किया और उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में युवा उद्यमी चौपाल के दौरान युवा उद्यमी यात्रा का शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में पुराने वाणिज्यिक वाहनों को हटाने के लिए नोटिस जारी करने का फैसला लिया और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में उद्यमियों ने युवाओं के साथ अपने अनुभव साझा किए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। संवाददाताओं से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि यह विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया में सुर्खियां बटोरने की लालसा का प्रतीक है। श्री नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया गया है और मामले की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
1: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रहने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग

0: डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही।
1: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित जेन एच युवा उद्यमी चौपाल में देश के सफल युवा उद्यमियों और उद्यम संस्थापकों के साथ सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल इस बात की है कि उनके विचारों को सही दिशा, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन मिले। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ऐसा मजबूत उद्यमिता इकोसिस्टम तैयार कर रही है जहां युवा अपने आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए आवश्यक जानकारी और सहयोग प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: जो आके सोच रहा है उसको हेल्प करें। 2014 से पहले हरियाणा के अंदर लगभग 200-250 स्टार्टअप थे। हरियाणा में 12,500 स्टार्टअप हैं और 12,500 में से 17 यूनिकॉर्न में तब्दील हो गए, जिनकी 100 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। इसी से आप अंतर लगाइए कि देश किस गति से बदला है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों, उद्योग जगत, स्टार्टअप और सामाजिक संस्थाओं को एक मंच पर लाकर युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी।
2: एक तो नौकरी खोजता स्टार्टअप्स के अंदर, तो आप नौकरी देने वाले बन से जब आपने स्टार्टअप शुरू किया 2000 के करीब में आपने युवाओं को रोजगार किया, उसके लिए हमने स्टार्टअप्स पॉलिसी भी बनाई। मैंने पिछले बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि बच्चे अगर हमारे यूनिवर्सिटी विषय के ऊपर रिसर्च करती है तो उसको हम 20 करोड़ रूपए का वो फंड अलॉट किया था।
1: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित जेन एच स्टार्टअप सम्मेलन युवा उद्यमी चौपाल के दौरान 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर युवा उद्यमी यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना तथा उन्हें अपने नए विचारों को सफल उद्यम में बदलने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराना है। युवा उद्यमी यात्रा के तहत दोनों बसें दिसंबर माह तक प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगी। इस दौरान कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, ITI तथा कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने की प्रक्रिया, वित्तीय सहायता, ऋण सुविधाओं, तकनीकी सहयोग और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के जिलों में पुराने वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के नोटिस जारी किए जाएंगे। BS1, BS2, BS3 और BS4 श्रेणी के ट्रकों और बस मालिकों को निर्धारित समय सीमा में वाहनों को हटाने या बदलने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। BS1, BS2, BS3 और इससे पुराने वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों पर स्क्रैप कराना होगा। पात्र BS4 वाहनों को स्क्रैप कराया जा सकता है अथवा NCR से बाहर पड़ते शहर में बेचा जा सकता है। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वाहनों को जब्त कर उन्हें अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निवारण किया। उनके सामने कुल 17 मामले रखे गए, जिनमें से 14 का मौके पर समाधान किया गया जबकि 3 को लंबित रखा गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन मामलों में जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया,
3: अलग अलग समस्याएं थी, अक्रोचमेंट को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, कुछ अन्य बिजली को लेकर थी। समस्याओं के समाधान को अलग अलग अधिकारियों को कहा है। एक पायनियर इंडस्ट्री पार्क जो तावड़ू रोड पर है, इंडस्ट्रियल पार्क जिसने काटा है, उसने उसमें 33 KV का सब स्टेशन बना करके देना था, परंतु अभी तक नहीं बना। उसके ऊपर भी मैंने तुरंत कहा है कि संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करें ताकि इंडस्ट्रीज को कोई समस्या न आए।
1: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर एबिक द्वारा विश्व उद्यमिता दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्टार्टअप आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में कृषि उत्पादों, ड्रोन तकनीक, कृषि मशीनरी, स्मार्ट कृषि, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों तथा अन्य नवाचारों से संबंधित स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों एवं तकनीकों को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में 3 स्टार्टअप्स के संचालकों ने अपने स्टार्टअप के अनुभव साझा किए। इस अवसर पर कुलपति

0: प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने कहा,
1: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी उद्यमिता को लेकर काफी प्रयास कर रहे हैं और उनका मानना है कि यदि हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है तो उद्यमिता को बढ़ावा देना पड़ेगा और इस दिशा के अंदर 2018 में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर चौधरी चरण सिंह राणा कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ था। अभी तक हम 250 से ज्यादा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं जिसमें 200 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। अभी तक हम 10 करोड़ से ज्यादा रुपए की जो सहायता है वो अपने सभी स्टार्टअप्स को दे चुके हैं।
0: अंबाला में हरियाणा दूरसंचार परिमंडल के संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय की ओर से आज राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। संचार लेखा नियंत्रक शिल्पी सिन्हा ने बताया,
2: इस आयोजन में हमारे जो पेंशनर हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका हमने आतिथ्य किया, उनका सम्मान किया, उनके योगदान की सराहना करते हुए उनसे मार्गदर्शन भी लिया, साथ साथ उनकी सुविधा के लिए कुछ डॉक्टर्स बुलाए हैं उनके चेकअप के लिए। इसमें जो वयोवृद्ध पेंशनर हैं उन्हें सम्मानित भी किया है।
0: हिसार की पैरा एथलीट एकता भयान का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। आज हमारे संवाददाता ने एकता भयान से बातचीत की। एकता ने कहा कि अर्जुन अवार्ड के लिए चयन होने पर वह बेहद खुश हैं।
3: इट वॉज अ लॉन्ग अवेटेड अवार्ड। मैं बहुत टाइम से इसकी वेट कर रही थी और मेरी अचीवमेंट्स भी हो चुकी थी। फाइनली आई गॉट इट। बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ मैं पर्सनली, एंड ऑफकोर्स खेल रत्न से ऊपर है एंड आई एम होपफुल कि कभी वो भी मिलेगा, बट मैं बहुत खुश हूँ मेरी इस उपलब्धि पे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी पर राजनीतिक हताशा और मीडिया में सुर्खियां बटोरने की लालसा का आरोप लगाया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ FM 107.2 MHz ਤੇ।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: ते हुण तुसीं सुनोगे प्रोग्राम जयमाला जो विविध भारती दे मुंबई केंद्र तों रिले कीता जावेगा।
4: हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए,
5: भारत ये रहना।

मेघ भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

फौजी साथियों, अब आपको सुनाने जा रहे हैं व्हाट्स योर राशि, इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं सोहेल सेन और बेला शिंदे की, जावेद अख्तर के बोल और सोहेल सेन की तर्ज़।

0: कुछ दिल ने कहा,
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे से

0: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल और अमिताभ बच्चन की आवाजों में समीर और मनोज तपड़िया का लिखा हुआ इलैया राजा का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम चीनी कम।
1: इंप्रेस करने के लिए तो लोग 200 रुपए के फूल खरीद लेते हैं पर ये 2 घंटे में मर जाते हैं। पता नहीं क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं लोग फूल दे करके।

फौजी साथियों, अगला गाना हमने लिया है रेमो फर्नांडिस की आवाज में बॉम्बे फिल्म से। गीतकार है महबूब और संगीतकार हैं ए आर रहमान।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थ।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में धूम टू फिल्म का गाना। बोल है समीर के और संगीत प्रीतम का।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है जयमाला। फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए शान और शांतनु मैत्रा की आवाजों में थ्री इडियट्स फिल्म का गाना। स्वानंद किरकिरे हैं गीतकार और संगीतकार हैं शांतनु मैत्रा।

फौजी साथियों, अगला गाना हमने लिया है इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे और साथियों की आवाज़ें, स्वानंद किरकिरे के बोल और अमित त्रिवेदी के है तर्ज़।

फौजी साथियों, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से आवाजें हैं विशाल ददलानी, हंसिका अय्यर, और तमिल रैप कांच गाया है श्रीचरण कस्तूरी रंगन ने।

हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एस अतहर अली की लिखी झलकी विदेशी समधी, निर्देशिका मीनाक्षी मिश्रा।

0: न जाने काम के वक्त कहां मर जाता है कमबख्त। रैम, अबे वो रैम के बच्चे,
1: वो क्या मुसीबत है, क्यों शोर मचा रहे हो?
0: भाई मैं कहता हूँ रैम कहाँ है?
1: रैम कौन? रैम
0: रैम रैम रैम यानी के रामू।
1: रामू उसे जरा मैंने भेजा है, आता ही होगा, मगर ये रामू रैम कब से बन गया?
0: आज से, अभी से। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, आज से तुम भी उसे रामू नहीं रैम कहोगी, रैम, समझी?
1: क्यों जी, ये रामू को रैम क्यों कहूंगी मैं?
0: इसलिए कि आज से घर की हर चीज इंग्लिश स्टाइल की होगी।
1: इंग्लिश स्टाइल?
0: हाँ, लेकर हमारे ड्रेस, नाम और बातचीत तक इंग्लिश स्टाइल की होगी।
1: हाय राम, ये क्या हो गया है तुम्हें?
0: मुझे कुछ नहीं हुआ है, होगा तो मेरे विदेशी समझी को होगा। जानती हो उसे क्या होगा?
1: क्या होगा?
0: अगर तुम क्या जानो, देखो जब मैं उनको रिसीव करने के लिए यूं, हाँ, इस तरह एक हाथ आगे बढ़ाए हुए ये कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, हेलो मिस्टर माथुर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, तो उन्हें ही अचानक सकता हो जाएगा और फिर वो मुझसे पता नहीं क्या कहेंगे और फिर मैं उसके जवाब में पता नहीं क्या कहूंगा। इस तरह हम दोनों एक दूसरे पर छा जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मगर तुम्हारी ये भाषा सब गड़बड़ कर देगी।
1: क्यों?
0: हाँ देखो देखो, तुम ऐसा करना के, हाँ बस खामोश रहना।
1: क्या बात कर रहे हैं आप भी? 5 साल के बाद मेरा बेटा विदेश से लौट रहा है शादी करके और मैं उसके सामने खामोश खड़ी रहूं?
0: हाँ हाँ, तुम एक औरत हो और भला तुम कैसे खामोश रह सकती हो? अच्छा अच्छा, क्या बोलोगी तुम?
1: मैं अपने बेटे को गले से लगा लूंगी, प्यार करूंगी उसे।
0: क्यों नहीं, और मेरे बेटे, मेरे लाल जैसे घटिया सब तुम्हारे मुंह से निकलने लगेंगे और सारा अपना बनाया इम्प्रेशन खत्म हो जाएगा।
1: बाहर में गया तुम्हारा इम्प्रेशन? ऐसा इम्प्रेशन किस काम का जो एक माँ को अपने बेटे से भी ना मिलने?
0: अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, ये सारे स्टाइल अब पुराने हो चुके हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ।
1: क्या समझा?
0: देखो जब तुम दूर से अशोक को आते हुए देखोगी तो इस तरह हाथ हिलाना।
1: ठीक है।
0: और जब वो पास आ जाए तो एक छोटा सा किस उसके गाल पर जमा देना। इसके बाद अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर बड़े शिकायती लहजे में इस तरह से कहना, सनी तुमने आने में बहुत लेट हो गया, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए बहुत वरीड था, समझी? इस तरह बोलना।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा।
0: क्यों नहीं होगा?
1: अरे ये कोई तरीका है, बनावट ही बनावट झलकती है इसमें।
0: बनावट? अरे मैडम, मैं किसी तरह से ये जाहिर करना चाहता हूँ कि हम अपने विदेशी समझी से किसी तरह किसी भी बात में कमतर नहीं है। हाँ, और देखो तो मुझे मिस्टर कहोगी और मैं तुम्हें मैडम कहूंगा, अशोक से हम सनी कहेंगे,
1: सनी
0: और राम को रैम कहेंगे। मगर ये गया कहाँ, अब तक नहीं।

0: आया। अरे अभी तो उसको बहुत ट्रेनिंग देना बाकी है।
1: ओ, तुम क्या फिजूल की बातों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, इसके बजाय तो घर की सजावट में मेरा हाथ बटाओ। देखो ना, सारा घर कबाड़खाना लग रहा है।
0: जरूर जरूर बटाऊंगा तुम्हारा हाथ, मगर आज नहीं, कल। हाँ
1: कल क्यों?
0: हाँ, जब मेरे दोस्तों का भेजा हुआ सामान यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से चू चू करती हुई स्टूल कुर्सियाँ हटा दी जाएंगी और उनकी जगह शानदार फ्रेंच स्टाइल फर्नीचर आ जाएगा। ये टाक ये सेठी सब हटा देंगे। और जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे, मुजीब साहब की फिएट कार मेरी सर्विस में रहेगी। मेरी शान देखकर मेरे विदेशी समधी दंग रह जाएंगे। तुम सोचती नहीं हो, मैं कहता हूँ जरा सोचो, जब मैं एक शानदार सूट पहनूंगा और तुम स्मेली कुचिली साड़ी की जगह मॉडर्न स्टाइल के सिले कपड़े पहनकर मेरे हाथ में हाथ डालकर जब सुबह निकलोगी तो सारा शहर दंग रह जाएगा।
1: ठीक है, आपने सब लोग दंग रह जाएंगे कि कल तक तो दोनों अच्छे भले थे, ये अचानक आज कैसे दिमाग चल गया इनका।
0: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि मैं ऐसे कपड़े हरगिज नहीं पहनूंगी।
0: नहीं
1: नहीं
0: नहीं पहनोगी?
1: नहीं नहीं, कभी नहीं। मैंने हमेशा से साड़ी पहनी है, मैं साड़ी ही पहनूंगी।
0: अब अभी तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो ना, हमारा समधी विदेशी है और विदेशी औरतें साड़ी नहीं पहनती। हाँ,
1: विदेश की औरतें कपड़े पहनना छोड़ दें तो क्या हम भी उनकी नकल में अपनी तहजीब और अपनी सभ्यता छोड़ दें?
0: अभी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कब कहा?
1: विदेशियों की नकल में आंखें बंद करके दौड़ने वालों का क्या बरा?
0: अच्छा अच्छा अच्छा, लेक्चरबाजी बंद करो। तुम्हें क्या पता मेरे दिल में किस तरह की हलचल मची हुई है? अशोक मेरा बेटा जानता है कि मुझे विदेश से और विदेश की हर चीज से कितना प्यार है। उसने अब विदेश में शादी करके मेरे दिल की आरजू पूरी की है और अब मैं अपने विदेशी समधी को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं उनसे किसी बात में पीछे नहीं हुआ।
2: आप हमें बुलाए रहे थे मालक?
0: कौन? रैम? हाँ, यहाँ देखो, तुम्हें कुछ खास बात समझाना है। बैठो बैठो, यहाँ बैठो।
2: इलो, हम बैठ गए मालक, अब बोलो।
0: देखो, जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, समझा? नंबर एक, आज से तुम्हारा नाम रामू नहीं रैम है, रैम।
2: मनो, हमारा नाम तो रामू है मालक,
0: है नहीं था है? आज से हमने तुम्हारा नाम रैम रख दिया है।
2: बिना मुंडन के इधर दर मालिक।
0: क्या मतलब?
2: मतलब जे कि हमारा गांव में नाम रखे बखत मुंडन होता है मालक।
0: पकू मत, अरे मुंडन का इतना ही शौक है तो मुंडन बाद में करवा दिया जाएगा। और सुन सुन सुन, कल से तू ये धोती कुर्ता नहीं पहनेगा, समझा?
2: का कही मालक?
0: हाँ,
2: धोती कुर्ता नहीं पहनूंगा? तो का वैसे ही।
0: और शट अप, देख तू सफेद कोट और पैंट पहनेगा।
2: पैंट?
0: हाँ, होटल के वेटर की तरह,
2: होटल के बॉय।
0: और अगर तुझे कोई पुकारेगा तो तू कहेगा यस प्लीज,
2: यस प्लीज।
0: हाँ हाँ, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। देख देख देख, अच्छी तरह याद रखना मेरी बात। और सुन, वो मुंह धोने का साबुन पेरिस मेट जो मैं कल लाया था, बाथरूम में रख देना।
2: हाँ मालक।
0: बाथरूम की सफाई अच्छी तरह कर देना।
2: हाँ।
0: और देख, वहां से दतून हटा देना और उसकी जगह मेड इन इंग्लैंड टूथपेस्ट और टूथब्रश रख देना।
2: हाँ।
0: मेरा दोस्त अपना बैथिंग टब सुबह भेज देगा।
2: कहाँ मालक?
0: बैथिंग टब, समझा? तू उसे ठीक से जमा देना।
2: हाँ।
0: और सुन, लोटा बाल्टी वहां से हटा देना, आज से कोई लोटा बाल्टी से नहीं नहाएगा, समझा?
2: यस प्लीज।
0: अच्छा अब तू जा, कल शाम को वो लोग आने वाले हैं, उनके आने से पहले घर का नक्शा बदल जाना चाहिए, समझा?
2: यस प्लीज।
0: और देख देख देख देख, देख, तेरा नाम रामू नहीं रैम है, रैम।
2: यस प्लीज।
0: अच्छा अच्छा, अब तू जा, अब मजा आएगा विदेशी समझी साहब को, वो रंग जमाऊंगा के अकल दंग रह जाएगी जनाब की। हम मुझे भी सो जाना चाहिए, सुबह से उठना जो है बहुत काम करने हैं, मगर सोऊं कहाँ? पलंग तो मैंने सभी उठवा दिए, चलो नीचे चटाई पर ही सोते हैं, बस एक रात ही की तो बात है। कल यहाँ एक शानदार मसेरी बिछी होगी और मैली धोती और मैली बनियान की जगह मैं शानदार स्लीपिंग कॉन पहने सो रहा हूँगा। क्या शान होगी।

0: दस बजे रात को कौन आ गया? मेरा कोई दोस्त होगा मेरी मदद करने आया।
1: अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन है?
0: अरे
2: पिताजी।
0: अरे अशोक
2: पिताजी,
0: तुम? अरे अरे तुम तो कल शाम
2: वो हमने आपको सरप्राइज देने के लिए एक दिन बाद का लिखा था पिताजी।
0: और वो हमारे विदेशी समधी और विदेशी बहू कहाँ है? और हाँ, ये साड़ी में घूंघट किए हुए लड़की और वो धोती कुर्ते वाला आदमी कौन है?
2: पिताजी वही तो है मिस्टर माथुर, इंग्लैंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन। आओ, और ये है उनकी लड़की राधा।
3: प्रणाम करती हूँ।
2: और ये मेरे पिताजी हैं।
0: ओह हेलो मिस्टर माथुर, वेलकम, मोस्ट वेलकम।
4: जी नमस्ते।
0: नमस्ते। अरे अरे ये क्या करती हो बेटी?
3: काम करती हूँ।
4: आप इसके ससुर हैं ना, चरण छूकर आशीर्वाद मांग रहे हैं।
0: भाई ये तो कमाल है, जीती रहो बेटी, जीती रहो।
2: माँ कहाँ है?
0: अंदर है।
2: आइए अंदर आइए ना।
0: आइए आइए मिस्टर माथुर।
4: चलिए।
2: माँ माँ।
5: कौन? अरे अशोक मेरा बेटा, मेरा बच्चा।
2: माँ मेरी अच्छी माँ।
5: तुझे देखने को आंखें तरस गई थी बेटा, कितना दुबला हो गया है मेरा लाल।
2: कहाँ माँ, बड़ा चंगा तो हूँ। राधा ये मेरी माँ है।
5: सदा सुहागन रहो बेटी, सदा सुहागन रहो।
0: अशोक तुमने यहाँ वक्त से पहले पहुंचकर मेरे सारे प्रोग्राम पर पानी फेर दिया। मैंने तो बिल्कुल नहीं जानी क्या क्या सोचा था।
2: जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने क्या सोचा होगा, आखिर आपका बेटा हूँ ना। मैंने जानबूझकर ही ऐसा किया था।
4: भाई अशोक
2: जी,
4: तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे घर का वातावरण उससे भी कहीं बढ़कर है जैसा तुमने हमें बताया था।
0: जी जी, क्या बताया था इसमें?
4: जी यही कि मेरे माता पिता सादा जीवन, उच्च विचार वाले सिद्धांत के लोग हैं। बेटी क्या इंग्लैंड में तुमने कभी माँ बेटे को इस प्यार से मिलते हुए देखा था?
3: नहीं पिताजी, कभी नहीं। वहाँ तो बेटा अपने माँ बाप से इस तरह बात करता है जैसे एक एडवाइजर से बात की जाती है।
0: मगर आप लोग इस पोशाक में, मेरा मतलब था कि आप लोग इंग्लैंड में रहते हुए भी यही कपड़े पहनते हैं?
4: जी हाँ, आज से 25 साल पहले मैं अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड में जा बसा था।
0: अच्छा।
4: मगर सिन्हा साहब मैं अपनी सभ्यता को नहीं भूल सका। इंग्लैंड में मैंने एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोला।
0: अच्छा।
4: जहाँ हिंदुस्तानी ढंग के खाने पकते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
4: और सिन्हा साहब वहाँ की सजावट भी इसी ढंग की है।
0: खूब।
4: फिर मैंने एक शॉपिंग सेंटर खोला जहाँ हिंदुस्तान की बनी हुई चीजें बिकती हैं।
0: भाई वाह।
4: इसी 25 वर्षों में सिन्हा साहब मैंने वहाँ पाया कि वहाँ के लोग अपनी सभ्यता से उकताए हुए हमारी सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं।
0: खूब।
4: ये बात देखकर अपनी सभ्यता की जो कदर मेरे दिल में थी वो और बढ़ गई।
0: वाह वाह वाह वाह।
4: सिन्हा साहब मैं आज भी लोटा बाल्टी से नहाता हूँ और दतौन करता हूँ।
0: लोटा बाल्टी?
4: जी
0: दतौन। मेरा मतलब है रामू। यस प्लीज।
4: रामू
0: बाथरूम का सामान हटाने की जरूरत नहीं है, बस वैसा के वैसा ही रहने देना। और सुन सुन सुन सुन, तेरा नाम राम नहीं है, रामू है, रामू, समझा?
2: यस प्लीज। अरे रामू काका, रामू काका यहाँ आओ ना। रामू काका इंग्लैंड में रहकर मैं आ रहा हूँ और अंग्रेजी आप बोल रहे हैं। यस प्लीज,
0: यस प्लीज।
4: बहन जी आपको अपनी बहू पसंद आई?
5: जी हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील।
4: मैंने इसकी परवरिश खास हिंदुस्तानी ढंग से की है और सिन्हा साहब मुझे इसके लिए किसी हिंदुस्तानी वर्ग की ही तलाश थी जो आपके बेटे के रूप में मुझे मिल गया।
5: मैं भी भगवान से यही मना रही थी कि मैं तो इनके मन में स्वदेशी का प्रेम और अभिमान जगाना सकी। कम से कम हमारे समधी तो ऐसे मिले जो इन पर सवार विदेशी का भूत उतार सके।
4: बहन जी कहते हैं कांटे से कांटा निकलता है, सो विदेश प्रेम का भूत उतारने में विदेशी समधी ही काम आएंगे।
0: यस प्लीज।
6: विदेशी समधी।

अभी आपने एस अतहर अली की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशिका थी मीनाक्षी मिश्रा। ये झलकी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में जॉली LLB 2 फिल्म के गाने के साथ। जुनैद वसी हैं इसके गीतकार और संगीतकार हैं चिरंतन भट्ट।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली डलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सोहेल सेन, रेखा भारद्वाज, प्रतिभा सिंह बघेल और शाहिद माल्या की आवाजों में डबल एक्सएल फिल्म का गाना। मुदस्सर अजीज हैं गीतकार और संगीतकार हैं सोहेल सेन।

सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदा बहार।

श्रोताओं, इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे मिडिल क्लास लव फिल्म का गाना। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल.
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक. लीजिए अब सुने शर्वी यादव की आवाज में थप्पड़ फिल्म का ये गाना.

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
4: जी।
3: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: श्रोताओं अब आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में भूल भुलैया 2 फिल्म का गाना, समीर के बोल और प्रीतम की है तर्ज़।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब आज के चित्रलोक प्रोग्राम की आखिरी पेशकश पटियाला हाउस फिल्म से। सूरज जगन और अलीसा मेंडोंसा की आवाजें हैं, अनविता दत्त ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा।

0: मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप

0: पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
1: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू सिख जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
3: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
4: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
5: टू शिप्स विच आर फॉरेन फ्लैग,
6: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी

0: सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
1: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
2: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
2: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं SD बर्मन की आवाज में बंदिनी फिल्म के गाने के साथ। शैलेंद्र के हैं बोल और SD बर्मन की है तर्ज।
2: ओरे माझी

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में अनपढ़ फिल्म का गाना। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में प्रोफेसर फिल्म का गाना। हसरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

आइए अब सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध क्या गाना। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम ससुराल।

0: कुछ दिल ने कहा,
1: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल।

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए अब सुनिए एसडी बर्मन की आवाज में सुजाता फिल्म का गाना। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। गीतकार थे शकील बदायनी और संगीतकार नौशाद। हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में मुगल-ए-आज़म फिल्म से। गीतकार हैं शकील बदायनी और संगीतकार नौशाद।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
1: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे की आवाज में वक्त फिल्म से, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी माँ सगुना अभिनेत्री थीं। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थीं। इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: साठ के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

यहां आ रहा आया सावन झूम के, और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थीं और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म

कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर

0: 1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने माँ की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।
1: कोई बुड्ढा लंबो लंबो, कोई जादूआ।

300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध बना लिया। इमोशनल और परिपक्व हो चुका था उनका अभिनय के साथ ये ताल्लुक। कुछ मराठी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सन 2000 से उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी एक्टिंग की शुरुआत की है, जो लगातार जारी है। कई सीरियल्स को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों पर अरुणा जी वर्तमान में भी सक्रिय हैं। फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार उनके भाई हैं और अरुणा जी के पति हैं फिल्मकार कुकू कोहली। हालांकि सन 2012 में अरुणा जी को 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अरुणा ईरानी को आज भी फिल्मों से और फिल्म देखने वालों से बेहद प्यार है, बहुत ही बेशुमार मोहब्बत है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ही सक्रिय बनी रहें।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में सुनेंगे छाया गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत सुनने वालों को अनुराधा उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी के इस चढ़ते उतरते सफर में अचानक किसी का यूं मिल जाना कि लगे जैसे न जाने कितनी सदियों पुराना है ये रिश्ता हमारा। दुनिया की भीड़ में इधर हटकर उधर हटकर ये नजरें बस उस एक चेहरे को देखना चाहती हैं, वो शख्स जो जाना पहचाना लगता है। मिला तो बस अभी अभी, फिर क्यों एक अजनबी सी कशिश होती है। लफ्जों से भी ना बोला अब तक वो, बस आंखों से कुछ बयां होता है। दो जोड़ी आंखें जब मिलती हैं तो वक्त थम सा जाता है। हम हैं यहां इस वक्त, पर यादें एक जहां घूम आती हैं। हां, यही वो चेहरा है जिसे तलाश रही थी अब तक मैं। यही तो चेहरा है जिससे नूर बरसता है, वो चेहरा जो किसी चांद से कम नहीं चमकता।

जिसका साथ हो गुनगुनी धूप सा, आंखों में सुबह शाम उसी का ख्वाब उतर आता है, पास ना होते हुए भी हर पल उसका ख्याल घेरे रहता है, जब वो ना हो तो इंतजार उसका, जब कभी करीब पाऊं तो वो मौन हमारा, सचमुच कितना प्यारा है ये साथ तुम्हारा। वो जो हम कुछ कहते कहते एक ही शब्द पर ठहर जाते हैं ना, थोड़ा रुक जाते हैं और मुस्कुरा देते हैं, बस वो एक पल मोहब्बत में घुला हो जैसे हम एक दूसरे की बाहों में सिमट गए हो जैसे।

कभी सोचा है मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? सबसे प्यारा है उसका एहसास, वो एहसास जो किसी की हंसी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे, उसे उदास देखकर आपकी आंखें नम हो जाएं, लव्स जहां चुप हो जाएं, उसकी खामोशी पूरी दास्तां कह जाए, वो उसकी प्रतीक्षा जिसमें शिकायत कम और दुआएं ज्यादा हो, वो आंखें जो अपने आप में समाए हैं मेरा पूरा संसार, जिसके बस पास आते ही मौसम बदल जाते हैं।

अंतराल के इस पार आप सबका एक बार फिर स्वागत है। उस गगन पर चमकते चांद को देखा है कभी गौर से? तुम हो वो चांद मेरे लिए। चांद तो एक है और तारे अनगिनत। इसीलिए तो चांद इतराता है, इठलाता है। उस चांद के सबसे करीब वो जो एक छोटा सा सितारा है ना, बस मैं वो सितारा बनना चाहती हूँ तुम्हारे सबसे करीब और सबसे खास।

तुम्हारी बाहों में आते ही जीवन की सारी थकावट बिखर जाती है, बेचैन सांसों को चैन मिल जाता है, हसरतें सर उठाती हैं, सपने महक जाते हैं, वक्त ठहर जाता है, मन प्यार की धुली चांदनी में शीतल हो उठता है। सच मानो सबसे महफूज जगह तुम्हारी बाहों की पनाह है मेरे लिए।

मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत हो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी सबसे प्यारी याद है। जैसे पहली बारिश याद रखती है सूखी जमीन को, जैसे पहला सपना याद रहता है मासूम से मन को, तुम रच बस गए हो मेरी रूह में। सुकून हो तुम मेरा, बसेरा।

0: आज का छायागीत संपन्न करने के लिए अनुराधा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: कोई रोहन बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली

0: सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: इस वेले रात के 11:05 माफ़ करना, इस वेले रात के 11:05 से 16 सैकेंड होए ने। हुण साडी अज दी सभा इत्थे ही खत्म होंदी है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडे नाल फिर मुलाकात होवेगी। उदों तक दे लई इजाज़त दिओ। जय हिंद।